101.9 FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं कुछ ही क्षणों में। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंबल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

0: रिपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा आज। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार। 7 से भूले बिसरे गीत, सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से समाचार प्रभात, सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 9:30 केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 से। और इस कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 से सखी सहेली कार्यक्रम और 4 होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम।

हेलो फरमाइश के साथ शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका दूसरी कड़ी सुनिएगा। कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। 7 बजे से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं, प्रस्तुति जुबैर खान की। 8:00 से हवा महल में लेखन सुरेंद्र कौशिक का, निर्देशन सुशील बैनर्जी का। 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9 बजे से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 बजे से छाया गीत। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound, and that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से

0: बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, असम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
1: जी जी।
0: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली, उन कीड़े मकोड़ों की वजह से। और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
0: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है, और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी।
0: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा, और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी, और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
0: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है
1: जी, जी, जी।
0: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी, जी।
0: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी।
0: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया, और सा कैसे बजेगा इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी जी।
0: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है फिर
0: जी,
1: सुरों की संख्या
0: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
0: कितनी क्या बड़ी उनकी, और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी। इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं, और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी का ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सांस से पा तक भीड़ देखे। मैं बजा के सुना रहा हूँ
1: जी।
0: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे। और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी
1: जी, जी।
0: देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी।
0: उसके बाद मेरे गुरुजी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी।
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया
1: जी।
0: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था, जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था
1: जी जी,
0: 2006
1: जी जी।
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं। मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है और हरि प्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब।
0: क्योंकि माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरि जी ने। उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए।
1: बहुत कम उम्र में चले गए, बिल्कुल
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए। तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलके हरि जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है। मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब क्या बात है।
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ।
1: अद्भुत।
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है
1: जी,
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं
1: जी,
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना
1: जी,
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन
1: जी।

जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ।

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: कि खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है आप मत बजाइए, ऐसी मैंने दृष्टता कभी नहीं की। देखिए शंख बांसुरी में भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है भोले बाबा का वो देखिए।

0: अति सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता अभी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता है?
1: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
0: जी।
1: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहाँ चल रहा था, और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
0: जी।
1: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहाँ जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
0: जी।
1: मैं नहीं कर पा रहा था
0: जी।
1: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इतना जा सकेंगे
0: जी, जी, जी।
1: उसके नीचे क्या
0: जी।
1: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया।
0: क्या बात,
1: मन व्यथित हो गया।
0: अच्छा,
1: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में, वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया। और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है, वो अभी घर में, उसको मैंने एक याद, एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं,
0: हाँ,
1: शंख का, इसकी आवाज शंख

0: बजाने से लगता था शंख बज रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो उसलिए मैंने ये नाम इसका दे दिया कि शंख की तरह ये बजता रहे। और मंद्र सप्तक
1: जी
0: में चला गया।

0: फिर मैं नीचे के साथ तक।
1: बिल्कुल, और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है, दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं जी, तो उन्होंने पूरा PhD ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ना ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थाना है
1: जी जी,
0: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
1: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: एक बेटी की यादों में उसके पिता
5: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
6: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

15 मिनट हुए हैं। आइए आपको बता दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर होगा प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण। 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 का समय होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसमें आज की बात का विषय है विश्व खेल पत्रकार दिवस। साथ ही साथ भेंट वार्ता सुनिएगा आधुनिक तकनीकी के साथ नए आयाम ग्रहण करती आज की पत्रकारिता। वार्ताकार है मुकेश पांडे, पीआरओ नगर निगम अयोध्या। आपके संदेश आपके गीत का समय होगा 9:00 और 9:30 आप सुनेंगे हेलो अयोध्या। सजीव फोन इन कार्यक्रम 10:00 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ जाएंगे। फिर 12:30 पर पुनः हमारे केंद्र से प्रसारित होंगे कार्यक्रम। आप 12:30 पर सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। 1:00 कुछ तुमने कहा, 2:00 गीतांजलि और 2:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह पर। साथ ही गीतों भरी कहानी सुनेगा धरती के श्रृंगार वृक्ष पर। शाम 5:00 का समय होगा युवा संवाद सजीव फोन इन कार्यक्रम का। इसमें आज का विषय होगा जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम सुहानी का समय होगा 6:10 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे गूंजे स्वर गांव के। 6:45 का समय होगा किसानवाड़ी कार्यक्रम का। इसमें आज चर्चा होगी जुलाई माह के कृषि कार्य पर। साथ ही भेंट वार्ता सुनिएगा खरीफ सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन। वार्ताकार है डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल, सह प्राध्यापक कीट विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। रात्रि 8:15 पर सुनेंगे गीत गुंजन और महफिल गजल का समय होगा 9:15। 9:30 पर हेलो अयोध्या और 10:30 से सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। संदेशों के बाद हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से।

सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं।

0: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7145 करोड़ रुपए है।
3: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है, ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
4: मुझे बताते प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
2: इससे पहले

0: मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है वह केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
3: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET

0: 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
6: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
8: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
9: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
8: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
9: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
8: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से

0: संपर्क करें, रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात की सुनहरी बेला, मंद मंद बहती बयार और ईश्वर के स्मरण से बढ़कर दिन की शुरुआत क्या हो सकती है। मन में हो श्रद्धा, अधरों पर हो नाम, हर पल रहे प्रभु का पावन धाम। भक्ति की ज्योति कभी कम ना हो, यही है जीवन का सच्चा और परम धन। कहते हैं प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा संबल है। जब हृदय से नारायण को स्मरण करते हैं तो मन की व्याकुलता शांत होती है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। आइए इसी भावना के साथ शुरू करते हैं भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम।

भक्ति में शक्ति है, विश्वास में जीत है, प्रभु के चरणों में ही जीवन की सच्ची प्रीत है। जो सिर श्रद्धा से झुक जाता है, वहाँ हर परिस्थिति में उठ जाता है। जब आस्था अटल हो, विश्वास अडिग, तब भक्त की पुकार सीधे प्रभु तक पहुँचती है। और इसी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ, भाव के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन।

0: के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
1: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
2: मम्मी मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
3: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
4: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
5: ईश्वर का स्वरूप एक है, बस भक्त की भावना के अनुसार उनके नाम और रूप बदल जाते हैं। उन्हें कोई राम कहकर पुकारता है, कोई श्याम कहकर पुकारता है, लेकिन हर सच्ची पुकार का उत्तर प्रभु अपने करुणामय स्वरूप में अवश्य देते हैं। यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हृदय प्रेम से भर जाए और आँखें प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा करें, तब मन बस यही कहता है कि प्रभु के दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भक्त की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास है। जब मन पूरी श्रद्धा से प्रभु को पुकारता है तो दूरी मायने नहीं रखती। प्रभु किसी न किसी रूप में अपने भक्त का हाथ थामने स्वयं चले ही आते हैं। वो रूप कोई

जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तब मिलती है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु की शरण में चला जाता है। प्रभु की शरण केवल एक स्थान नहीं बल्कि वो विश्वास है जहां मन को शांति, हृदय को साहस और जीवन को नई दिशा मिलती है। जब संसार के सारे सहारे छोड़ जाते हैं तो नारायण का नाम ही सबसे बड़ा संबल बन जाता है। जब प्रभु की शरण में जाएं तो पूरी तरह अपने आप को उन्हें सौंप कर ही आए, बाकी वो स्वयं देख लेंगे।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा से सरोवर अमृतकाल कलश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आशा है कि आज के भजनों ने आपके मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर दिया होगा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूद

रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना,

0: जल अनुपानल को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज

0: सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां

0: बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
3: की बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
7: नहीं अछूता हो जिस
6: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: कुछ यादें उम्र भर दिल के करीब रहती हैं, कुछ दुआएं हर पल नसीब रहती हैं। मिलना हो या ना हो तकदीर की बात, मिलना हो या ना हो तकदीर की बात, सच्ची मोहब्बत का इंतजार हमेशा अजीज रहता है। कुछ इंतजार समय के साथ खत्म नहीं होते, वे याद बनकर दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते दूर होकर भी अपनी महक नहीं खोते, यही एहसास इस खूबसूरत गजल में बड़ी नजाकत से पिरोया गया है।

बारिश की हर बूंद एक मीठा सा पैगाम लाती है, भीगी फिजाओं में बसा खुशियों का नाम है। ऐसे सुहाने मौसम में दिल बस यही कहता है कि थोड़े से पल सुकून के और खास हो। रिमझिम फुहारों ने मौसम को गुनगुनाया है, हर दिल ने आज कोई ख्वाब सजाया है। आइए गीतों के संग इस पल को भी यादगार बनाएं, क्योंकि बारिश ने फिर प्यार का मौसम लाया है।

0: जी बिल्कुल, मौसम करवट बदल रहा है तो आपको भी अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी अपनों का भी ध्यान रख पाएंगे।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, सुबह के 8:30 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
7: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
7: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
8: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
9: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
10: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
11: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
10: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
11: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
10: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी

श्रोताओं, हर दिन खास होता है अपने आप में और हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प हमारे लिए लेकर आता है। आज क्या खास है? आज हम बात करेंगे आज के विश्व खेल पत्रकार दिवस पर। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में, जिसमें हम आज बात करेंगे विश्व पत्रकारिता दिवस पर, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर। आज का दिन ये उन पत्रकारों को समर्पित है जो खेल के मैदान में बनने वाले हर इतिहास, हर संघर्ष, हर जीत और हार की कहानी अपनी लेखनी से, अपनी आवाज के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हैं। कहा गया है ना, कलम जब सच के साथ चलती है तो इतिहास के पन्ने भी रोशन हो जाते हैं, और जब खेल की बात हो तो हर जीत एक प्रेरणा बन जाती है। श्रोताओं, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, खेल हमें अनुशासन, धैर्य, टीम भावना, संघर्ष और हार के बाद फिर उठ खड़े होने का साहस सिखाते हैं। लेकिन इन प्रेरणादायक कहानियों को घर घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य खेल पत्रकार करते हैं। जब कोई खिलाड़ी वर्षों की मेहनत के बाद पदक जीतता है, जब कोई टीम असंभव लगने वाली जीत दर्ज करती है, जब कोई नया सितारा दुनिया के सामने आता है, तब पत्रकार ही हैं जो शब्दों में ढालकर उनकी कहानी, उनके जीत का एक इतिहास बनाते हैं और उनको पन्नों पर लाते हैं और आम जन तक उनके बारे में सूचनाएं भी देते हैं। खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने का काम नहीं, ये खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके समर्पण, उनकी मेहनत और उनके सपनों को समाज तक पहुंचाने का माध्यम भी है। एक निष्पक्ष, जिम्मेदार खेल पत्रकार खेल भावना को बढ़ावा देते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर सभी पत्रकारों को नमन है जो हर मौसम, हर परिस्थिति, हर चुनौती के बीच अपने दायित्व ईमानदारी से निर्वाहन करते हैं। जीत की कहानी हो या हार का सबक, हर पल को शब्दों में संवारते हैं। जो खेल को जन जन तक पहुंचाए वही पत्रकार कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर लाखों खेल मैदान हैं और हर घंटे कुछ न कुछ अद्भुत घटनाएं भी घटित ही होती रहती हैं। पत्रकारों की तत्परता, निष्पक्षता और प्रतिभा की बदौलत दुनिया भर के लाखों प्रशंसक जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने निर्णय लेते हैं और अपनी राय बनाते हैं। खेल जगत को बढ़ावा देने में खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 2 जुलाई यानी आज के दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को आधिकारिक उत्सव दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1924 के पेरिस ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल और प्रेस संघ की स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान हुई थी और इसने दुनिया भर के खेल पत्रकारों के बीच सौहार्द, बंधन और पसंद नापसंद को मजबूत करने पर जोर दिया था। खेल पत्रकारिता का विकास हुआ क्योंकि विश्व भर में विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों ने शक्ति, धन और प्रभाव के संदर्भ में एक नया रूप ले लिया। खेल

पत्रकारिता हर मीडिया समूह के लिए कवरेज का एक अभिन्न अंग है। खेल पत्रकारिता में वे संगठन भी शामिल हैं जो केवल विभिन्न खेलों को कवर करने वाले दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। यह एक वैश्विक व्यवसाय बन चुका है और इसमें प्रायोजन तथा ओलंपिक खेलों और फुटबॉल विश्व कप के आयोजन से भरी मात्रा में सारे समाचार रहते हैं और इन आयोजनों ने न जाने कितने कुशल खिलाड़ियों के बारे में बताया है हमको, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताया है। तो दोस्तों, जो भी खिलाड़ी होता है वो अपने तन मन धन हर तरह से जुटकर तब कहीं जाकर अपना एक पदक हासिल करता है। उसकी मेहनत और उसके संघर्ष को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं ये पत्रकार, तो दोनों ही तारीफ के काबिल है, चाहे वो खिलाड़ी हो और या तो हमारे पत्रकार जो सम्मानित हैं हमारे। हम तो यही कहते हैं कि खेल का मैदान हो या जीवन का, हमें खेलना तो जी जान से चाहिए।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपने 12th पास कर ली या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।

दोस्तों, आज का ये विश्व खेल पत्रकार दिवस है, हमें ये याद दिलाता है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं, वे समाज में सकारात्मक सोच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करते हैं। खेल पत्रकार इस पूरी यात्रा के साक्षी भी होते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाने वाले सेतु भी होते हैं। आज हम इन सभी खेल पत्रकारों के समर्पण, निष्पक्षता और अथक प्रयासों को सम्मान पूर्वक नमन करते हैं और उन्हें विश्व खेल पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज हमारा पत्रकारिता का जो तकनीकी है वो बहुत आगे बढ़ती गई है, तो इसी विषय पर हम आज एक वार्ता लेकर आए हैं। आधुनिक तकनीक के साथ नए आयाम ग्रहण करती आज की पत्रकारिता, इस पर वार्ता सुनेंगे। वार्ताकार हैं मुकेश पांडे जी, PRO नगर।

0: निगम। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह केवल खबर लिखने या दिखाने की प्रक्रिया भर नहीं है। पत्रकारिता मूलतः उस आवाज का नाम है जो अक्सर दबा दी जाती है। यह उस वर्ग की अभिव्यक्ति है जो कमजोर है, पीड़ित है और अपनी बात सीधे शासन सत्ता तक पहुंचाने में असमर्थ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद, विधानसभा और ग्राम पंचायत तक जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह माना जाता है, लेकिन जब व्यवस्था सुस्त पड़ जाती है, जब सत्ता उदासीन हो जाती है, तब पत्रकारिता उसे उसके उत्तरदायित्व की याद दिलाती है। जहां अन्याय होता है वहां सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म है, जहां सच दबाया जाता है वहां सच को उजागर करना पत्रकारिता का कर्तव्य है, और जहां सत्ता जवाब नहीं देती वहां जवाब मांगना ही पत्रकारिता का साहस है। यदि हम दो दशक पहले की पत्रकारिता को याद करें तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। उस समय पत्रकारिता का केंद्र अखबार हुआ करते थे। साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाएं और दैनिक अखबार ही सूचना का प्रमुख स्रोत थे। खबरें धीरे आती थीं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता था। लोग अखबार पढ़ते थे, उन पर चर्चा करते थे, बहस करते थे और समाज में एक वैचारिक प्रक्रिया शुरू होती थी। शासन सत्ता अखबारों में छपी खबरों पर संज्ञान लेती थी। संसद और विधानसभा में अखबारों की कतरनों पर चर्चा होती थी। कई बार एक खबर नीति निर्माण का आधार बन जाती थी। हालांकि उस दौर के अखबार आज जैसे आकर्षक नहीं होते थे। अधिकांश अखबार ब्लैक एंड व्हाइट छपते थे। रंगीन तस्वीरों, इन्फोग्राफिक्स और हाई क्वालिटी विजुअल का अभाव था। कई बार खबरों में तस्वीर की जगह प्रतीकात्मक चित्र, कार्टून या केवल शब्दों के सहारे अपनी बात रखी जाती थी। उस समय पत्रकारिता में न आज जैसी जल्दबाजी थी, न टीवी पत्रकारिता जैसा शोर। खबरें पहले जांची जाती थीं, फिर छप। अखबार निकालने की प्रक्रिया में कई लोगों की भूमिका होती थी। रिपोर्टर, उपसंपादक, संपादक, प्रूफ रीडर और पेजिनेटर। हर स्तर पर अखबार को परखा जाता था। यह एक सामूहिक और जिम्मेदार प्रक्रिया थी। फिर समय बदला। कंप्यूटर और संचार क्रांति ने पत्रकारिता की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। अखबार ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गए। 90 के दशक में डिजाइन, लेआउट और फोटोग्राफी ने पत्रकारिता को नया रूप दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट के मेल ने खबरों का प्रवाह तेज कर दिया। अब देश विदेश और दूरदराज के जिलों से खबरें कुछ ही क्षणों में प्रकाशन मुख्यालय तक पहुंचने लगीं। इस बदलाव का असर अखबारों के अंदरूनी ढांचे पर भी पड़ा। प्रूफ रीडर और पेजिनेटर की भूमिकाएं धीरे धीरे समाप्त होती गईं और उनकी जगह डिजाइनर ने ले ली। खबरें अब केवल पढ़ी नहीं जाती थीं, बल्कि देखी भी जाने लगीं। वर्तमान दौर में पत्रकारिता का परिदृश्य और भी तेजी से बदल रहा है। टीवी पत्रकारिता, डिजिटल न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया ने पारंपरिक पत्रकारिता को गहराई से प्रभावित किया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण मोबाइल क्रांति है। आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। खबर जानने के लिए अब अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता। सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन में बदल गई है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने अपने ई पेपर और डिजिटल संस्करण लॉन्च कर दिए हैं। लोग अपनी सुविधानुसार कभी भी, कहीं भी खबरें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे माध्यम बन गए हैं जो किसी घटना के घटित होने के कुछ ही मिनटों में सूचना देश दुनिया तक पहुंचा देते हैं, वह भी तस्वीर और आवाज़ के साथ, वीडियो के साथ। इससे एक ओर जवाबदेही बढ़ी है तो दूसरी ओर खबरों की गति असाधारण रूप से

0: तेज हो गई है। यदि इस बदलाव को तकनीक के दृष्टिकोण से देखें तो आज मोबाइल और लैपटॉप ही न्यूज रूम बन चुके हैं, कैमरा ही कलम है और आम आदमी भी रिपोर्टर बन गया है। यह परिवर्तन पत्रकारिता को नई ताकत दे रहा है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आज हर चैनल, हर पोर्टल और हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म सबसे तेज बनने की होड़ में है। एक्सक्लूसिव खबर देने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या सबसे तेज होना सबसे सही होना भी है? जब खबर की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है तो हड़बड़ाहट में सत्य की जांच अधूरी रह जाती है, और यही आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है, सच के साथ खड़े रहना। लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स और TRP की दौड़ में सनसनी फैलाने से बचना, ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रहे। तकनीक का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि अब अन्याय और घटनाओं को छिपाना आसान नहीं रह गया है। सोशल मीडिया ने प्रोफेशनल पत्रकारिता के वर्चस्व को तोड़ा है। आम नागरिक भी अब सत्ता से सवाल पूछ सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सच के साथ साथ झूठ भी उतनी ही तेजी से फैलता है। संदर्भ से काटे गए वीडियो, भ्रामक ऑडियो और अधूरी जानकारी समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर रही है, जो चिंताजनक है। यदि यह कहा जाए कि तकनीक ने पत्रकारिता को शक्ति दी है, तो यह भी उतना ही सच है कि उसकी कमियों ने हमें सोचने पर विवश किया है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता में निर्णायक भूमिका निभाएगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। खबरों का विश्लेषण, डेटा जर्नलिज्म और कंटेंट निर्माण के तरीके और भी बदलेंगे, लेकिन साथियों, भविष्य में तकनीक और बदलेगी, प्लेटफार्म बदलेंगे, माध्यम बदलेंगे, लेकिन पत्रकारिता की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की पत्रकारिता नए आयाम जरूर ग्रहण कर रही है, लेकिन उसकी असली कसौटी यही है कि वह सच के प्रति कितनी ईमानदार रहती है। यदि पत्रकारिता ईमानदार रही तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, देश तानाशाही से बचा रहेगा और भारत अपनी परंपराओं, संस्कृति को सहेजते हुए ज्ञान विज्ञान के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता, आधुनिक तकनीकी के साथ नए आयाम ग्रहण करती आज की पत्रकारिता। वार्ताकार थे मुकेश पांडे, PRO नगर निगम अयोध्या।

अमर उजाला लिखता है कि अब ट्रस्ट कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की प्रवेश व निकास के समय होगी तलाशी, मुख्य मार्गों पर बढ़ाई गई निगरानी, राम मंदिर के दर्शनों में। देर से ही सही मेघ हुए मेहरबान। सत्रह केंद्रों पर टीटीआर से 37,920 अभ्यर्थी होंगे शामिल। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करनी होगी परीक्षा। स्कूल चलो अभियान शुरू, 15 तक होगा सर्वे। विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में घर घर जाकर बच्चों का सर्वे करेंगे शिक्षक। शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ड्रॉप आउट कम करने पर भी रहेगा विशेष तौर पर जोर। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के लिए भी किया जाएगा तैयार। स्टेट सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। समर कैंप के खिलाड़ियों को वितरित की गई खेल किट।

0: मध्य क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टॉल कर ही नहीं, इनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: इसी के साथ हमारा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या अब यही समाप्त होता है। प्रणाम अयोध्या। अभी आपने सुना कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
6: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: अजय मित्र तो हम सब का साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: परिवार के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बहुत बहुत स्वागत है। दिलों को जोड़ने वाले आपके संदेश और सुरों में सजी आपकी पसंद, यही है आपके संदेश, आपके गीत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये गीतों भरा सफर, जिसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है कि हम आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाएं। आपने इतने प्यार से हम तक फरमाइशें पहुंचाई हैं, तो उतने ही प्यार से हम आपके गीतों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लुका छुपी से पसंद करने वाले श्रोता है ग्राम टोरो वाला, जिला नवा शहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत और उनका पूरा परिवार। तो पेश है आपकी पसंद पे ये गीत।

अपने संदेश भेजें और अगर आप हमसे करना चाहते हैं बातें तो हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में भी आप जुड़ सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों से और अगर आपको आप कहीं भी हैं हमारे प्रोग्रामों को सुनना चाहते हैं तो न्यूज ऑन AIR ऐप भी उपलब्ध है जिससे आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जी जी बिल्कुल, हमें पता है कि आप अगले गीत की फरमाइश सुनना चाहते हैं कि अगला गीत कौन सा है, किस फिल्म से और किसने कहां से भेजा है। जी ये अगला गीत है फिल्म बादशाहों से। पसंद करने वाले श्रोता है आप सभी ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो पेश है आपकी पसंद का ये गीत। दोस्तों हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें संदेश व्हाट्सएप पर भेजें, फेसबुक पर भी हमारे पोस्टर्स हैं उनपे

किसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी

सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और इनके समस्त साथी। तो पेश है बॉर्डर 2 का ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी इन गीतों की पंक्तियां सीधे दिल को छू रही हैं और भावुक कर देने वाली होती हैं। ऐसे गीत जो दिल में एकदम उतर जाते हैं। अब कार्यक्रम की अगली फरमाइश। फिल्म नाम गुम जाएगा से पसंद करने वाले श्रोता है हमारे कस्बा बाड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, संगीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल। जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत बहुत जल्द आपके रेडियो पर पहुंच रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने सारे संदेश हम तक भेजे। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है गौतम नगर नादेन से प्रभाकर जोकले आरती जोंधले नांदेड़ महाराष्ट्र से।

अभी आपने सुना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी।
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, पोस्ट
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार। तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: नहीं तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
0: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
1: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
1: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

उमंग नए एहसास और मधुर संगीत के साथ आज की इस सुरीली पारी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपका साथ यूं ही बना रहेगा। संगीत का ये सफर

0: आपके दिन को और भी खूबसूरत बनाएगा। दोस्तों, हर नई पारी अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आती है। आइए आज के इस संगीतमय प्रस्तुति में देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हमें ऐसा लग रहा कि मौसम की खराबी की वजह से या तकनीकी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से कॉलर से हमारी बात नहीं हो पा रही है। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कहाँ से फोन किया है सर? कौन सा गाना सुनेंगे?
1: प्रेम सिंह से सुधा बोल रहा हूँ, उज्जैन से।
0: उज्जैन से फोन किया आपने?
1: जी हाँ।
0: महादेव का मंदिर?
1: जी बिल्कुल
0: जी। उज्जैन से आपने फोन किया, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही है। हम बहुत खुश हुए कि आपसे हमारी बात हो रही है। ये बताइए, आज आप किस फिल्म का गाना सुनेंगे?
1: जी अर्पण फिल्म का सुनवा दीजिएगा।
0: सर, उज्जैन के बारे में हमें बताया, वहाँ महाकाल का मंदिर है, तो वहाँ के बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं।
1: जी वन ईयर है या अभी होल्ड देखोगे आप?
0: नहीं नहीं आप बताइए, हमारे सभी श्रोता आपको सुन रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल, तो मैं बताऊँ, अभी महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है यहाँ उज्जैन में।
0: जी जी,
1: जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और सावन के महीने में तो काफी यहाँ पर मतलब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने।
0: हाँ,
1: के लिए
0: अभी सावन लगने वाला है तो इस समय भीड़ ज्यादा होती है।
1: हाँ जी, भीड़ के लिए भी आपको बताऊँ, जैसे कि रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: और आने जाने के लिए मतलब यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: इस समय वहाँ का मौसम कैसा है? कैसा है मतलब, जैसे यहाँ तो कुछ बादल वादल है, थोड़ा बारिश भी हो रही है, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: हाँ जी, यहाँ पर भी ऐसा ही बादल आ रहे हैं, बर्फ भी रहे हैं और कुछ खाली बादल भी निकल रहे हैं, हवा भी चल रही है।
0: गर्मी से थोड़ा निजात मिली है?
1: हाँ, गर्मी का तो काफी सामना किया था, लेकिन फिलहाल तो अभी मतलब ठंडक हो चुकी है वातावरण में।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: थोड़ा।
1: जैसे थोड़ा पानी गिरता है ना, थोड़ी उमस फिर भी बढ़ती है।
0: अच्छा, इसका आपकी खेती पर भी प्रभाव पड़ा था?
1: हाँ, जैसे उस समय तो क्या होता है कि गर्मी में खेत खाली रहते हैं ना, तो उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बस हाँ ये है कि वातावरण काफी गर्म हो चुका था।
0: चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आज अर्पण का?
1: हाँ, इसमें है, लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई।
0: अर्पण फिल्म का ये गाना नहीं है?
1: जी फिर
0: ये गाना
1: जी अर्पण फिल्म का है, तो लता मंगेशकर और सुरेश राजकर की आवाज में।
0: नहीं, हमको लगता है इस फिल्म का गाना ये नहीं है। इसमें तो परदेस जाके परदेसिया, तौबा कैसे है नादान, ऐसे गाने हैं, मोहब्बत अब।
1: हाँ, तो फिर आप ये सुनवा दीजिएगा, परदेश जाके परदेसिया।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद पे ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। आपने हमें कॉल किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें कॉल जरूर करिएगा।

0: जी लोग दूर जाके भूल जाते हैं, ऐसा तो कभी कभार होता है। हालांकि जो भी दूर जाता है वो भी हमारे उतना ही करीब होता है। कहते हैं ना, दूरियां रास्तों में होती हैं, दिलों में नहीं होती। जैसे कि हमारे श्रोता इतनी दूर दूर से हमें कॉल कर रहे हैं और उनसे हमारी बातें हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। धन्यवाद
0: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैडम। मेरा नाम अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना देवकाली हूँ।
0: अर्जुन जी,
1: जी मैडम, फिल्म
0: कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे आज?
1: है नागिन,
0: नागिन फिल्म
1: जितेंद्र
0: का।
1: मालूम है मैडम, नागिन नागिन
0: अच्छा, क्या करते हैं सर?
1: जितेंद्र। जी मैडम, दुकान पे बैठा हूँ, दुकान पे आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: सारे कार्यक्रम सुन रहे हैं? सारे कार्यक्रम अच्छे
1: लगे
0: लगते
1: मैडम,
0: हैं?
1: सुबह सुबह से रेडियो खुलता है
0: चलिए, बहुत अच्छा
1: और
0: है।
1: रात में बंद होता है 11 बजे। सारे
0: मतलब सारे कार्यक्रम आप रेगुलर सुनते हैं?
1: सारे प्रोग्राम आपके सुनते हैं, सारे प्रोग्राम आता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा है कि हमारे श्रोता इतने रेगुलर हैं, सुनते भी हैं।
1: जी मैडम जी।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: हाँ मैडम मैडम, हमारे एक मित्र हैं
0: जी जी
1: अशोक कुमार सोनकर,
0: जी
1: पीकू सदर बाजार,
0: जी जी
1: उन्हीं के फरमाइश से गीत सुनाई।
0: बिल्कुल, आपके मित्र तक ये गीत जरूर जा रहा है। और आप क्या, हमारे सभी श्रोता इस गीत को सुन रहे हैं और आपकी आवाज से लग रहा है कि कितने एक्साइटेड, कितने उत्सुक है। एक बार बताइए, आपकी कॉल लग जाती है? लोग तो शिकायत करते हैं कि उनकी कॉल लगती नहीं है।
1: मैडम मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना, समय
0: अच्छा,
1: देना पड़ता है, इसे थोड़ी लग जाएगी, थोड़ा
0: नहीं
1: समय तो
0: लोग,
1: देना पड़ता है। लोग एक बार लगाते, दो बार लगाते, छोड़ देते हैं।
0: नहीं लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी नहीं लगता, लेकिन आपकी मेहनत सफल रहती है कुल मिला के।
1: आप लोगों की दुआएं हैं, इसलिए आकाशवाणी से हमको इतनी मोहब्बत है, क्या बताएं मैडम। बगैर
0: चलिए,
1: सुने, बगैर सुने काम ही नहीं चलता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और
1: जी
0: हमें
1: जी जी
0: कॉल
1: मैडम,
0: ऐसे
1: बहुत
0: करते
1: बहुत धन्यवाद
0: रहिए।
1: आपका।

0: जी असर बातों का भी होता है, दिल पर होता है। अच्छी बातें कहे तो दिल खुश होता है, और कोई बात ऐसी हो जाए जिससे दिल दुखी हो जाता है तो सब कुछ उदास उदास सा लगता है। लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में हम ऐसी ही बात करेंगे जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिले और आपका दिन बहुत बहुत बहुत अच्छा रहे। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी सर, बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है
1: हाँ मैं
0: आपका।
1: बात कर
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या
1: जी मैं
0: नाम है, अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से फोन किया है?
1: दीपक राय नाम है हमारा, ग्राम लक्ष्मीदासपुर, पोस्ट कोहरीरा, जिला अयोध्या से। जी
0: अयोध्या से ही फोन किया है आपने।
1: जी जी मैम,
0: क्या करते हैं आप?
1: जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, इस समय गांव आया हूँ,
0: बाहर बाहर कहाँ रहते हैं?
1: नोएडा रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा।
0: अच्छा, नोएडा से अभी आप गांव आए, तो दोनों जगह
1: जी
0: में कुछ तो असर रहता है ना। जब यहाँ आप आते हैं तो आपको अच्छा लगता होगा ना।
1: अरे मैम, वहां से यहाँ से फर्क बहुत पड़ता है,
0: जब वहां
1: यहाँ का
0: रहते,
1: एटमोसफियर कुछ अलग ही है।
0: हाँ वो तो है। अब यहाँ का जो आपको खुली खुली सी हवा, लोगों का जो प्यार बर्ताव होता है, वो वहां पे भी
1: वो
0: ऐसा
1: तो
0: ही
1: है ना ना मैम, वैसा वहां देखने नहीं मिलता, यहाँ का तो सुकून कुछ अलग ही है।
0: क्या बदलाव लगता है आपको गांव और शहर के बीच में?
1: अब गांव में मैम क्या रहता है, हरियाली वगैरह है, खेत बाड़ी की हरियाली, और हर जगह मानसून बड़ा अच्छा लगता है। वहां पर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है,
0: जी,
1: और उसके बाद बस यही मकान घर यही देखने मिलता, वो हरियाली देखने नहीं मिलती वहां।
0: चलिए आपकी पसंद पे हम आपका ये गीत सुनवाएंगे।
1: जी मैम
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, धन्यवाद।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: समय भागता जाता है और हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय बहुत थोड़ा सा होता है। फिर भी हमारे कॉलर्स अपनी मेहनत से हमसे जुड़ ही जाते हैं। देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप तक हमारी आवाज जा रही है? थोड़ा सा रेडियो से दूर हो जाइए और थोड़ा तेज बोलिए, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से फोन किया है आपने? अभी भी आपकी आवाज बहुत धीमी सी आ रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। हेलो,
4: हाँ मैं सोनी सिंह बोल रही हूँ।
3: सोनी जी, किस फिल्म का गाना सुनेंगी आज?
4: मैं दीवाना पिक्चर का सुनना चाहती हूँ।
3: क्या करती है सोनी जी? अच्छा, तो इस मतलब जैसे इस समय तो स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो काम भी बढ़ गया होगा।
4: हाँ, काम तो बहुत बढ़ गया।
3: गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाना हुआ बाहर आपका? गर्मियों की छुट्टी

0: कहीं बाहर जाना हुआ आपका?
1: हाँ मैम,
0: गई थी घूम टहल के आ गई और इस समय फिर से काम में लग गई। अच्छा क्या काम है जो मतलब जैसे खाना और बाकी रूटीन वर्क तो होते ही रहते हैं, क्या करने का मन नहीं करता है? सारे काम जैसे कभी कभार क्या होता है, खाना बनाने का मन नहीं हुआ, कभी बर्तन है, कभी सफाई है, कभी कपड़े हैं। बाकी कर लेती हैं। आज किस फिल्म का गाना सुनेंगी आप? कौन सा गाना सुनेंगी? सनम हम तो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। चलिए आपकी पसंद है ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों, फिल्म दीवाना के इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम हेलो अयोध्या अब यही खत्म होता है। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे कार्यक्रमों को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और जुड़े रहें आकाशवाणी अयोध्या के साथ हमेशा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: आज के

0: आज के मेहमान। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के अभिव्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देशी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं। ये

0: पढ़ने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था। हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग कादंबरी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था। पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी मनोरमा में प्रकाशित

0: में छपी थी उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाते थे।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है, ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी, किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं, वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साह वर्धन हुआ तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला जी। तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह है वो, और उनके रचनावली के 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित है। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वो नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि

0: व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी।
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो है वो सांधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है। और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। अभी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाए को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधि में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतीय हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है, राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई,
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था,
0: हाँ बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: जी बिल्कुल।

0: वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं लाड़ी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
0: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। गाड़ी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। पर साई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है। आपने मीम की बात की है। मीम हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग, जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे, उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं। हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है। आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया।
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। और कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए

0: मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था, एक कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित है या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दोहरी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए
1: जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
0: चाहिए। आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच
0: जी। जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुन रहे।
1: आइए सुनते हैं।

0: शंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: ये आपकी बात सही लगती है मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में है, आलोचकों में है, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है। व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो। तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है। तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा। तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से जितना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
0: जी,
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
0: जी, जी।
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
0: जी, जी।
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि याजावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और याजावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आईं और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
0: याजावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
0: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
1: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका ये, इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर

0: बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं, और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है। प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है।
1: जी
0: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा जी जोखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव। दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम 101.9 FM बैंड पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
6: मम्मी, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
7: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
8: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग, जहां गूंजेंगे अपनी मिट्टी की महक, अपनी संस्कृति की खुशबू और लोक जीवन की मधुर स्वर लहरियां। लोकगीत श्रोताओं केवल गीत नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और खुशियों, उत्सव और भावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। तो आइए इन्हीं मधुर स्वरों के साथ आज की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ करते हैं।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं। आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें, धरती को हरा भरा सुंदर

0: स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपकी बात कार्यक्रम में,
3: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
3: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें,
4: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
3: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
4: 830-321-9911 पर भेज दें।
5: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। आशा है लोकगीतों की यह श्रृंखला आपको अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से जोड़े रहेगी। आइए अब सुनते हैं आज की प्रस्तुति का अगला मनभावन लोकगीत।

0: इन्हीं मधुर स्वरों के साथ हमारा आज का लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग यहीं संपन्न होता है।
1: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
3: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं फरमाइशें जो कि हमें आई है हमारे फेसबुक पेज पर। पहली फरमाइश आई है हरजिंदर छिंदा की। इनकी फरमाइश हमें आई है गांव नथाना पंजाब से। अगला संदेश हमें आया है राजेश अश्रुबा साबले का छत्रपति संभाजी नगर से।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा का। अगला संदेश है दिग्दर्शन गौड़ का। सुरेंद्र खुराना का संदेश हमें आया है। अगला संदेश है नवी हसन अब्बासी का, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, ग्राम बिडोरा तहसील। इनका संदेश आया है हमें लोकेंद्र गुर्जर का। अगला संदेश है रंजीत कोरेगोनकर का, बसमत रोड परभड़ी महाराष्ट्र से। मनोहर लाल गांधी का संदेश हमें आया है विजयनगर चाणक के चौक से। सदानंद मंदूरकर का संदेश आया है डाबकी रोड अकोला से। बीके हितेंद्र दास का संदेश हमें आया है कार्यक्रम में। हमें अगला संदेश आया है जाकिर मंसूरी का, बाजार रोड मुंगीसापुर से। तो आइए कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर शामिल करते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह पल्लवी शाह, अगला संदेश हमें भेजा है ओम बगरिया गांव बांटी वाला फजल का पंजाब से। शंकरलाल जायसवाल का संदेश हमें आया है जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से। सुखविंदर सिंह जोड़ा का संदेश हमें आया है कृष्णा पार्क।

भेजा है ओम बगरिया गांव बांटी वाला फजल का पंजाब से। शंकरलाल जायसवाल का संदेश हमें आया है जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से। सुखविंदर सिंह जोड़ा का संदेश हमें आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से। हिंगोली महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजा है शाहजी बोटके ने। अगला संदेश है नरेंद्र शर्मा जेटली का, इनका संदेश हमें आया है कलानौर से। अगला संदेश है तुलसीदास मस्कीन का, पंचकुला चंडीगढ़ से। गुरमीत सिंह मीता का संदेश हमें आया है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। नानक खन्ना का संदेश हमें आया है सफीदो सिटी हरियाणा से। अगला संदेश श्रोताओं हमें आया है नितेश कुमार दिवांगन का, इनका संदेश हमें आया है पलारी छत्तीसगढ़ से। अजीत कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से इन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश कार्यक्रम में हमें आया है देवेंद्र कुमार गुप्ता का, कस्बा उगैती से। गुलाब दास मणिपुर मणिपुरी का संदेश आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से। माखन वर्मा अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारे सभी फरमाइशकर्ताओं की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है प्रेम सिंह वरवाल की। इनकी फरमाइश हमें आई है कार्यक्रम में, इनकी फरमाइश हमें आई है हनुमानगढ़ से, बहलोल नगर हनुमानगढ़ से। अगला संदेश हमें आया है श्रोताओं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन का। एसके अलबकस का फरमाइश हमें आया तेलंगाना निजामाबाद से। राजेंद्र नारंग का संदेश हमें आया बटिंडा रोड मडी डबवाली से। अगला संदेश है नजमुल होडा जावेद का झारखंड से। अनिल जैन का संदेश हमें आया मलियान सरधना मेरठ से। इरशाद अहमद मदरसा गेट भाऊपुर मुड़ियाहूं जौनपुर से। केपीएस चौहान का संदेश हमें आया है चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत से। उत्तम सिंह जंगेल का संदेश हमें आया है कोहका भिलाई से। भागवत चौबे लाडला जी का संदेश हमें आया है सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से। अब्दुल गफ्फार का संदेश हमें आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी से। शंभू दयाल का संदेश हमें आया है गांव जाखोद राजस्थान से। प्रदीप मंडल का संदेश आया है मौजे अस्तू का। अगला संदेश आया है बसंत लाल साव का पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरडी से। हीरा मणि वर्मा का संदेश आया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सीताराम कागरा का संदेश हमें आया है एकता कॉलोनी रोहतक से। जॉन डिकेस्ट्रो का संदेश हमें आया है। अगला आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हमें कुछ और फरमाइशें आई हैं। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से संदेश भेजा है दिलशाद हुसैन ने। लोहार हरियाणा से संदेश आया है बिल्लू छिडालिया का। अगला संदेश आया है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा का। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से संदेश आया है चंद्रकांत साहू का। परभड़ी महाराष्ट्र से संदेश आया है रुपेश संघई का। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से संदेश भेजा है रमेश कुमार कंबोज ने। अगला संदेश हमें कार्यक्रम में भेजा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा ने। देवरी भाटापारा से के आर साहू का संदेश आया है। बोधराज खोरवाल का संदेश हमें आया है उत्तम नगर दिल्ली से। कार्यक्रम में हमें अगला संदेश श्रोताओं आया राजकोट गुजरात से रश्मि पांड्या का। संदीप कुमार का संदेश हमें आया है सहानी पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। संतोष भाकरे का संदेश हमें आया है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। राजू माथे का संदेश हमें आया है बुलढाणा फ्रॉम महाराष्ट्र से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, आपकी पसंद और आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम। यदि आप भी अपने मनपसंद गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर भेज दें। आपकी भेजी गई फरमाइशों में से चयनित गीतों को हम कार्यक्रम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देर किस बात की है, अपनी पसंद हमें कल सुबह भेजते रहिए, प्रतिदिन भेजते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जहां आपके दिल की बात बनती है संगीत की सौगात। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम में बने रहिए। मिलते हैं कार्यक्रम में छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना ठेडिये माना।
7: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
8: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
9: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी

0: गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: श्रोताओं, ये वापस लौटते हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके भेजे हुए फरमाइश। श्रोताओं, हमें फरमाइश भेजी है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज अंसारी ने। अगला संदेश हमें आया है उदयपुर राजस्थान से बबलू भाई का। सुरेश राठौड़ का संदेश हमें आया है गांधीनगर गुजरात से। भोजपुर तगा सहारनपुर से संदेश आया है मोहम्मद इंतजार का। अगला संदेश है बरेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर का। बालकरण वर्मा का संदेश आया है ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। राहुल पाल का संदेश हमें आया है गोपी खिरिया से। अगला संदेश हमें भेजा है अरविंद कुमार ने। अगला संदेश है नंद किशोर घटे का संदेश हमें आया है बीड शहर महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगला संदेश है श्रोताओं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया का। खोखरा वाली श्री गंगानगर से संदेश भेजा है विनोद बरासा ने। दिग्दर्शन गौर का संदेश हमें आया है मेरठ से। अगला संदेश है पंजाब रामटेके से सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। कार्यक्रम में अगला संदेश श्रोताओं आज आया है संतोष नामदेव का बघेरा दुर्ग से। अगला संदेश है बद्दू लोहार पोपाल घाट। अगला संदेश श्रोताओं आया है बी कमाल का मजनू का टीला से। कमल बलूजा का संदेश आया है। राजपाल का संदेश हमें आया है आदर्श नगर मलौट पंजाब से। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है राजू मिगलानी का। इनका संदेश श्रोताओं हमें आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल करते हैं और कुछ फरमाइशें। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से हमें संदेश भेजा है आजन कुमार सिंह ने। गांधी चौक रोड पर पंजाब से संदेश आया है मिका विर्क का। अगला संदेश है श्रोताओं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे का। अगला संदेश हमें आया है रावर करनाल से विनोद लखनपाल का। कोल सिटी बरका काना से हमें संदेश भेजा है अफजाल ताज ने। साधुर शहर राजस्थान से संदेश आया है राम कुमार रिवाड़ का। अगला संदेश आया है गुलबलोत तहसील आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह का। अगला संदेश है गाड़ीखाना चईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा का। कार्यक्रम में हमें अगला संदेश आया है श्रोताओं ग्राम देगाव तहसील पूड़ा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है सोहन जोशी ने। अगला संदेश हमें आया है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपन ताइडे का। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें आया है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर का। स्वर्ण सिंह गिल का संदेश हमें आया है लोहगढ़ ठाकुरवाला से। अगला संदेश श्रोताओं हमें भेजा है दीपेश वर्मा ने ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। प्रकाश बोरगोनकर का संदेश हमें आया है छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से। अगला संदेश कार्यक्रम में भेजा है गांधीनगर गुजरात से कल्याण जी के परमार का। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये फरमाइशों की घड़ी में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई हैं धनवंतरी नगर जबलपुर से अशोक सिंह की। अगला संदेश हमें भेजा है इंदु पार्वती सुभाष गुदारे का। इनका संदेश हमें आया है गांव हीरावाली फजल का पंजाब से। अगला संदेश है माधव नामदेव का जबलपुर मध्य प्रदेश से। अनवर अंसारी का संदेश आया है अहमदगढ़ मंडी पंजाब से। अगला संदेश श्रोताओं आया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा का। कार्यक्रम में अगला संदेश है पुखराज बड़गुजर का कैलाश मिस्त्री का ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से। अगला संदेश है चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम का। शनि बजाजा कस्बा उगैती उत्तर प्रदेश से संदेश भेजा है प्रभाकर गुप्ता ने। अगला संदेश कार्यक्रम में आया है आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस का। धर्मेंद्र छीपा का संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। कस्बा हाफिजगंज जिला बरेली यूपी से संदेश भेजा है शकील अहमद इदरीसी ने। अगला संदेश आया है उत्तम कुमार बघेल का लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। उत्तम कुमार भगत का संदेश आया है पाकुड़ झारखंड से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारे सभी फरमाइशकर्ताओं की फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।

देश है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल की गंज।

टिंडवाड़ा से मोहम्मद कलीम अंसारी ने भेजा संदेश। लुखिंदर गुर्जर का संदेश हमें आया है जिला दतिया से। अगला संदेश श्रोताओं आया है ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हल्के जयपाल यादव का। अगला संदेश है फहीम मंसूरी का संदेश हमें आया है बांदा यूपी से। अगला संदेश है बिट्टू भाटिया का जज्जर हरियाणा से। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संदेश भेजा है संजय मारकंडे ने। अगला संदेश श्रोताओं छत्तीसगढ़ डोगरा गांव से राष्ट्रपाल गजबिये का संदेश हमें आया है। अगला संदेश हमें श्रोताओं भेजा है पिरपजा मिराज उद्दीन ने कश्मीर से। अगला संदेश आया है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण होगेड़े का। अगला संदेश आया है गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी का। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी ने। जगदीश धाकड़ का संदेश हमें आया है आलोट जिला रतलाम एमपी से। दातार सिंह का संदेश हमें आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। सोमदत्त नाभा का संदेश आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से। नंद कुमार ठाकुर का संदेश हमें आया है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य से। अगला संदेश हमें भेजा है विनोद मूनत ने। इनका संदेश हमें आया है उज्जैन बोरखेड़ा से। सहारनपुर से संदेश आया है राधा नामदेव का। तो ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश आया है मोहम्मद अफजल का राजस्थान से। मनोहर मगर का संदेश आया है अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से। रमेश कुमार का संदेश आया है पटेल नगर मालोट से। विनायक बंडे का पेंडे का संदेश हमें आया है आकोत से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है कालका से शुभचंद्र बजाज का। लसुटिया नरसिंगर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से संदेश भेजा है गोविंद वैष्णव ने। अगला संदेश आया है राजकुमार डूडी का गांव फरासी जिला हिसार से। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से संदेश भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी ने। हजारीबाग झारखंड से संदेश भेजा है वीरेंद्र भगत ने।

राजेश वर्मा का संदेश आया है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। अगला संदेश हमें कार्यक्रम में आया है रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान का। भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़ का संदेश आया है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा का संदेश आया है मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें आया है प्रमोद कुमार साहू का। इनका संदेश आया है बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम में अगला संदेश है श्रोताओं सतीश अनेजा का चंडीगढ़ से। वेद प्रकाश मिड्ढा का संदेश हमें आया है नईवाला जिला हनुमानगंज राजस्थान से। कमल साहनी का संदेश हमें आया है नागपुर महाराष्ट्र से। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम में चलते चलते शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें। कार्यक्रम में हमें अगला संदेश भेजा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता का संदेश आया है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम का कार्यक्रम में अगला संदेश है। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर का अगला संदेश हमें भेजा है। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली का कार्यक्रम में अगला संदेश श्रोताओं आया है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में श्रोताओं अगला संदेश हमें आया है। चनेश्वर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री का अगला संदेश है। संबलपुर कांकेर से फागुन राम यादव का मसरूर हसर का संदेश हमें आया है। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सुशील कुमार यादव का संदेश हमें आया है। करनैलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश से अगला संदेश हमें भेजा है। माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू ने कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले ने कार्यक्रम में अगला संदेश श्रोताओं आया है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा का बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हमें संदेश आया है। निसार सलमानी का रियासत हुसैन सिद्दीकी का संदेश आया है। जसपुर उत्तराखंड से नरेंद्र सिंह

शनिवार का संदेश यहाँ हमें आया है खेड़ी आलोर तहसील जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। अगला संदेश आया है श्रोताओं सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया का। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुनते हैं अगला कार्यक्रम कुछ कार्यक्रम गीतांजलि।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली गजल।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जगजीत सिंह और गुलाम अली की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र

0: कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी

0: बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप

0: जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, जिसे हमने अनुप्रसारित किया हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोता, ये सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम नारी जगत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
8: स्वागत है हमारी प्यारी बहनों का आज के नारी जगत कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में आपके रेडियो सखी एक क्षमा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज है 2 तारीख और आपको बता दें कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह का वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव पेड़ों का

त्यौहार भारत में हर साल 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण उत्सव है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण, वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और अधिकाधिक पेड़ लगाना है। और मेरो इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने की थी। इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, मृदा अपरदन को रोकना और आम जनता को अपने आसपास पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस सप्ताह के दौरान पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाए जाते हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल संरक्षण करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। 1950 में शुरू हुआ यह उत्सव समुदायों, विद्यालयों और संगठनों को वृक्षारोपण करने, जैव विविधता और संगठनों को वृक्षारोपण करने जैसे कई परिवर्तन से निपटने और एक हरित और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए वन महोत्सव 2026 के अवसर पर एक पौधा लगाकर हरित, स्वच्छ और सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आज लगाया गया एक पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य है। और बहनों, आज है गुरुवार और आज गुरुवार की तरह, हर गुरुवार की तरह आज भी हम लाए हैं आज का स्पेशल सेगमेंट गीतों भरी कहानी। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है धरती के श्रृंगार वृक्ष। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहनों, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन, फल, छाया और लकड़ी देते हैं। वे पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखते हैं। पेड़ों का महत्व और उनकी निस्वार्थ प्रकृति को दर्शाती एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी हम आपके लिए लाए हैं जिसका शीर्षक है धरती के श्रृंगार वृक्ष। बहुत समय पहले एक गाँव के किनारे आम का एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर रंग बिरंगे पक्षी अपने घोंसले बनाते थे और राहगीर गर्मी में उसकी ठंडी छांव में बैठकर आराम करते थे। उसी गांव में शेखर नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। शेखर रोज उस पेड़ के पास खेलने आता था। वो पेड़ के तने से लिपट जाता, उसकी डालियों पर झूला झूलता और थक जाने के पर उसकी छांव में सो जाता। पेड़ भी उस बच्चे के आने से बहुत खुश होता था। कई साल बीत गए, शेखर बड़ा हो गया था और शहर पढ़ने चला गया। अब वह पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेला हो गया और उदास रहने लगा। कई सालों बाद शेखर एक दिन वापस लौटा, लेकिन अब वह काफी उदास लग रहा था। पेड़ ने उसे देखकर खुशी से अपनी डालियां हिलाई और कहा, आओ मेरे दोस्त, मेरे साथ खेलो और आम खाओ। शेखर ने उदास होकर कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे शहर में अपना काम शुरू करना है और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे गांव में रहना है आकर, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ करना है और इस गांव को बहुत अच्छा और हरा भरा बनाना है।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर

0: पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आए आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन तुम मेरे सारे मीठे आम तोड़कर बाजार में बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और फिर क्या था, शेखर ने उन्हें बेचकर पैसे लेकर फिर शहर चला गया। इसके बाद शेखर फिर बहुत सालों तक वापस नहीं आया। एक दिन बहुत सालों के बाद शेखर अधेड़ उम्र में पेड़ के पास वापस आया। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने पेड़ से कहा, मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने निस्वार्थ भाव से कहा, तुम मेरी मजबूत शाखाओं को काटकर उनसे अपना घर बना सकते हो। शेखर ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दी और उन मजबूत शाखाओं से अपने घर की छत बनाई। पेड़ ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसे शेखर की मदद करके बहुत खुशी हुई। बहुत साल बीत गए, शेखर बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन लड़खड़ाता हुआ थका हारा पेड़ की ठूंठ बचे हुए तने के पास आया। पेड़ ने बहुत दुखी होकर कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास अब न आम है, न ठंडी हवा है और न ही शाखाएं जिन पर तुम झूल सको। अब तो मैं बस एक सूखा तना बन गया हूँ, क्या अब भी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? शेखर अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब आम या शाखाओं की जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस शांति से आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने अपनी बची हुई जड़ें शेखर की तरफ बढ़ा दी और कहा, मेरी जड़ें सबसे सुरक्षित हैं, तुम यहाँ बैठकर आराम कर सकते हो। उस समय बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। उस पेड़ में जो कि अब केवल सूखा तना था, उसमें भी नन्ही नन्ही फिर से कोपले आ गई थी। बूढ़ा शेखर पेड़ों की जड़ों में बैठ गया और उसे बहुत सुकून मिला। पेड़ भी बचपन से शेखर के सभी सुख दुख में साथ था, उसे भी बहुत सुकून मिला। शेखर पेड़ की जड़ के पास बैठकर बसंत ऋतु से आई हुई उन नई कोपलों को देखने लगा। उसे बहुत शांति मिल रही थी।

बहनों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पेड़ हमारे लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे हमें फल, लकड़ी, छाया सब देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। ठीक इसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और माता पिता व प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आज हजारों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई कम करें और अधिकाधिक संख्या में पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। इसलिए तो धरती का श्रृंगार है वृक्ष, और हमें भी अपने जीवन से इन पेड़ों को, वृक्षों को, पेड़ पौधों को कभी अलविदा नहीं कहना है और हमेशा इनके साथ रहना है, इनको साथ लेकर चलना है।

वेनू भोजन का असली स्वाद और सुगंध आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। यदि आप घर के बने खान पान जैसे चाय, सब्जियां या सूप में सुगंध और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो तेज पत्ता, पुदीना, धनिया और करी पत्ता जैसी हरी सब्जियों को, मतलब हरी पत्तियों का सही इस्तेमाल सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल बहनों, इन कुछ हरी पत्तियों का इस्तेमाल हमारे स्वाद का रंग जो है और सेहत का संग बढ़ाता है। वैसे तो हमारी सभी बहनें लगभग इन पत्तियों का को इस्तेमाल करती होंगी अपनी रसोई में, तो क्यों ना हम भी कुछ और भी बातें करते हैं और सुगंध और स्वाद बढ़ाने वाली पत्तों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बहनों, करी पत्ता, आप करी पत्ता तो सारी बहनें यूज करती होंगी, इस्तेमाल करती होंगी। करी पत्ता बहुत सी चीजों में यूज होता है, हमारे खाने के स्वाद में तो बढ़ाता ही है स्वाद और सुगंध दोनों। ये एक और चीज में लाभदायक है जो कि है हमारे बाल। अक्सर सबको इस शिकायत होती है कि हमारे बाल बहुत रूखे हो गए हैं, बहुत झड़ रहे हैं। तो अगर आप सब, अक्सर महिलाएं जो है वो मेहंदी का प्रयोग करती हैं, अगर उस मेहंदी में के पाउडर में अगर आप करी पत्ते को सुखाकर उसको अपने पीस कर अपने बालों में अगर आप लगाएंगी तो आपके बालों की जो शाइनिंग हुई वो बढ़ जाएगी और आपके बाल भी कम झड़ेंगे। और तेज पत्ता को हमेशा घी या तेल में अच्छी तरह से चटकाएं। ऐसा करने से इनका तेल निकलता है जो भोजन में बेहतरीन महक लाता है। जैसे कि छोला है या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें मसाले, गरम मसालों की जरूरत होती है, तो उसके तड़के में आप तेज पत्ता को यूज करिए। पुदीना और धनिया की जो पत्तियां हैं वो हमेशा खाना पकाने के बाद ऊपर से डालनी चाहिए। कभी कभी लोग जल्दबाजी में खाने के साथ ही, मतलब जो सब्जियां हैं उसको तड़के में डाला और उसके साथ ही धनिया भी डाल देते हैं, पुदीना भी डाल देते हैं। लेकिन अगर धनिया पुदीना को आप ज्यादा कुक कर दोगे, ज्यादा आप उसको पका दोगे तो

उसकी जो महक है ना वो खत्म हो जाती है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। ज्यादा देर तक पकाने से इसकी जो प्राकृतिक सुगंध और पोषण है वो नष्ट हो जाते हैं। पुदीने और तुलसी की पत्तियों को पीस कर भोजन में पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से भोजन का स्वाद जो है वो तीखा और ताजा स्वाद आता है। ऐसा तीखापन नहीं आएगा कि आपको कसैला लगेगा, वो जो तीखापन है वो बहुत अच्छा सा लगेगा, वो मीठा मीठा सा तीखापन लगता है और उसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि चाय या काढ़े में तुलसी या पुदीना की पत्तियां उबालकर डालने से स्वाद में इजाफा होता है। अगर आप काढ़ा बना रहे हो तो उसमें तुलसी है तो तुलसी, और नहीं है तो पुदीना अगर है तो पुदीने की पत्तियों को डालिए, उससे जो आपकी चाय या काढ़े का टेस्ट है वो बहुत ही फ्रेश आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। तेज पत्ता का प्रयोग स्वाद और सुगंध में हम करते ही करते हैं, पर अपने हाइपोग्लाइसेमिक उद्दीपक और वाथर गुण विशेषताओं के कारण औषधीय निर्माण में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। वैसे तो लोग, हमारी महिलाएं या हम लोग नेचुरली या मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम तेजपत्ते को केवल खाने में ही डाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक ऐसी औषधीय गुण पाया जाता है जो हमारे औषधि में भी इसका प्रयोग होता है। सुगंधित पत्तियों वाली हरी सब्जियां विटामिन और खनिज का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। वे पकाकर भी खाई जा सकती हैं, सलाद में भी खाई जा सकती हैं, और सुगंध का स्वाद के साथ गहरा संबंध है। सुगंधित पत्तियां भोजन के रूप में रस गंध इन तीनों की एक साथ पूर्ति करती हैं। और बहनों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी इन्हीं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपने रेडियो सखी क्षमा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम नारी जगत 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार। खूबसूरत

0: संदेशों को भेजने के लिए स्वागत है। एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और

0: के मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो।

0: युवराज तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
1: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
0: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
1: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
0: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
1: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
3: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
5: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
4: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
4: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का

0: नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
6: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
7: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है सूरज यानी

0: मीन्स सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
0: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी, मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
3: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
4: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
5: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
5: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
5: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
5: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
5: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
4: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
5: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर।
2: सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
5: सर एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सो

0: हम सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
3: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे केंद्रीयकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
7: दुखद अनुभव मिलता है और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक। चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल की भाई, शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग

0: बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: ये पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं ऐसा
0: ही काम करते थे।
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे
1: अब? हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा।

0: एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे, घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था, अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से ही, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, ना सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर सकती है और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे
0: परिवार को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमान तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा,
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती, बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो
0: है ना। हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है,
1: उसके बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही है उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि रात को रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी दो तीन दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है, ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से एक दो घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है, तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको

0: संदेह वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
1: एक साथी ने लिखा, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
1: आराम
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए, तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी

0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती सुनते
1: हैं?
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्ना लाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्ना लाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्ना लाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आपका तो बहुत पुराना सुनता हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलू फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खान और अकबर खान, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
0: खानदान फिल्म का? अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधर सर फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ हैं और आप मुंबई के स्थित जगहों पर हैं
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे है कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर क्या गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सजन आ
1: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मन चाहे गीत,
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो अच्छा। करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। हाँ। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे पहुँचते।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग तो, के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं हमारे हिमाचल की जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक

0: केंद्र में है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं क्या कहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है। मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
1: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
0: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे, ये गाना सुनना है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी। और

0: इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है और आज के मेहमान टक्कर सब सुनती हूँ मैं, सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो क्या बात है, और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना?

0: ना कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देकर चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमर।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर काटिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका

0: का जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
1: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यही अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
0: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर की कभी विरोध भारती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
1: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
0: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वे पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विरोध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
0: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला।
1: बहुत बढ़िया है।
0: कोई भी ऐसा भरती फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
1: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
0: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
1: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में वारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: वारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन वहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं वहरात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं?
1: के समय जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को जब छुट्टियाँ मिलती है तब हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बहरात के समय हमें जो ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बहरात के समय फैमिली के साथ।
0: आपकी नजर से वो गर्मियां हैं मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना और दूसरा जो है हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं, देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
0: जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं, गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: बड़ा अच्छा लगा जान करके, और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
0: जी
1: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है, तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
0: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी बिल्कुल सर कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते जी। कहो सर
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वित निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे युवा संवाद।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपने 12th पास कर ली? या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: 3, 2, 1, इट्स अ शो टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप हैं फिट, फाइन एंड फैंटास्टिक। और अगर नहीं तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि अगले 30 मिनट तक आपके साथ रहेगी आपकी दोस्त ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त दिशा पांडे और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या का सबसे यंग, सबसे इंट्रैक्टिव और सबसे एनर्जेटिक प्रोग्राम युवावाणी, जिसके अंतर्गत आज होने वाला है युवा संवाद, सजीव फोन इन प्रोग्राम। दोस्तों, आज का युवा संवाद एक ऐसे विषय पर है जो लगभग हर युवा की लाइफ से जुड़ा हुआ है, जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। दोस्तों, आज की लाइफ बहुत फास्ट है ना, और उसके साथ फास्ट फूड भी बन चुका है हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा। सुबह सैंडविच, दोपहर में बर्गर और शाम में पिज्जा, और बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या स्वाद के पीछे भागते भागते हम अपनी सेहत से समझौता तो नहीं कर रहे हैं? इसे हम मुद्दे पर आज होगी खुलकर बात। अगर आपके मन में है कोई विचार, कोई अनुभव या साझा करना चाहते हैं आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो ये मंच आपका है। फोन लाइंस आपके लिए ओपन हो चुकी हैं, फोन उठाइए और अभी मिलाइए 7376 80 40 90। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7376804090। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी आवाज बनेगी इस चर्चा का सबसे मजबूत हिस्सा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, कीप लिसनिंग, क्योंकि शुरू हो चुका है युवाणी, जहां युवा सोचते हैं, बोलते हैं और बदलते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स कनेक्ट, लेट्स मेक हेल्दी आवर प्रायोरिटी। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी आप डायल करते रहिए 7376 80 40 90। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है, जिनका हम स्वागत करते हैं और कहते हैं हेलो।
7: हेलो, नमस्कार
6: जी। नमस्कार, हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
7: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से।
6: हाँ जी, हाँ जी। तो आज का विषय आपको पता है क्या है, युवा संवाद का?
7: जी जी जी जी जी जी जी, आज क्या विषय? बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है।
6: तो बताइए,
7: आप जो विषय है स्वास्थ्य से जुड़ा है,
6: तो बताइए आप जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं कि नहीं?

0: खाते हैं, खाते तो होंगे ही, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ और हम तो खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जंक फूड ये सब खाते हैं
0: जी।
1: तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमें जंक फूड खाने से नुकसान होता है, लेकिन खाना तो सही है लेकिन थोड़ा हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, हम स्वाद के अनुसार ज्यादा खा लेते हैं, तो हम खाते खाते हम भूल जाते कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से जो है बिगड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाने पे ज्यादा ध्यान देते,
0: लिमिट नहीं रह जाती है,
1: कम खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है फास्ट फूड को भी हमें थोड़ा क्या बोलते हैं लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और फल फ्रूट जो है हमारे लिए भी सेहत वगैरह के लिए ठीक है। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं एक एप्पल जो है बिल्कुल जो है सुबह अगर खाएंगे एक एप्पल भी सेहत के लिए ठीक होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी दोस्त प्रेरित हुए होंगे आपकी बातों से। आपने हमें शिमला से कॉल किया, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग राकेश जी।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। तो दोस्तों आप भी डायल करिए 7376 80 40 90 और जुड़ जाइए कार्यक्रम युवाणी से लाइव, और पहुंचाइए दुनिया के हर कोने, देश के हर कोने कोने तक अपनी बात, अपने विचार, अपनी आवाज। देखते हैं कौन जुड़ गया हमारे साथ। हेलो
2: जी, रुपेश बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
0: रुपेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक ठाक एकदम अच्छा।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप बताइए जंक फूड आप खाते तो होंगे ही क्योंकि सभी खाते हैं, तो उससे होने वाली समस्याएं क्या है, क्या क्या आपने उससे मतलब ऐसा फील किया जो कि आपको नुकसान कर रही है वो चीजें?
2: मेरी हैबिट नहीं है जैसा ना इसको खाना, कभी कभी हो गया हफ्ते दो हफ्ते 10 दिन में, इसलिए मुझे ज्यादा नुकसान नहीं करता है।
0: अच्छा आप लिमिट में खाते हैं, अनलिमिटेड नहीं खाते हैं?
2: हाँ। अगर आदत बना लेंगे, हैबिट बना लेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। फैटी लीवर,
0: बिल्कुल ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आपके हैबिट में नहीं है और आप कभी कभार खाते हैं तो ठीक है, स्वाद से ज्यादा जरूरी सेहत तो नहीं है, बट कभी कभी स्वाद को जो है वो प्रायोरिटी दे देनी चाहिए, कभी कभार, जैसा कि आप खाते हैं ना कभी कभी।
2: हाँ जी, हाँ जी। होता क्या है कभी कभी लोग मूड को फ्रेश करने के लिए भी फास्ट फूड का सहारा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो बाकी अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे कोई भी चीज है ना, अगर उसकी अति होगी ना तो वो नुकसान ही करेगी। जंक फूड फास्ट फूड के अलावा भी अगर आप किसी चीज को मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान ही करती है।
0: रुपेश जी, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप कुछ ये बताएंगे कि जंक फूड और फास्ट फूड से कैसे बचे, कुछ हेल्दी चीजें क्या खा सकते हैं, इस चीज से कैसे बच सकते
2: हैं? उसका विकल्प है, हमारे अयोध्या मंडल में क्या होता है कि मोटे अनाज की घुघरी बनाई जाती है, गेहूं और चना और मटर,
0: वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, उसको मैंने भी खाया है बिल्कुल है ना, रात को सोख करके रखते हैं फिर सुबह उसको बनाते हैं। चलिए रुपेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारे सुनने वाले सभी श्रोता सभी दोस्त,
2: क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बात हो पाई है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग रुपेश जी, आप ऐसे ही कॉल करते रहा करिए। दोस्तों आप भी डायल करें 7376 80 40 90 और जुड़ जाइए आकाशवाणी अयोध्या से लाइव कार्यक्रम युवाणी पे। देखते हैं हमारे कौन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
3: मैं राधा बोल रही हूँ, आदमपुर से।
0: राधा जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
3: आदमपुर से।
0: जी
3: आदमपुर से मैं।
0: अब घाटमपुर
3: अयोध्या।
0: अच्छा अयोध्या से बात कर रहे हैं आप? जी जी। तो आज का जो युवा संवाद का विषय है वो है जंक फूड और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। तो आप बताइए, आप भी फास्ट फूड खाती ही होंगी क्योंकि सभी खाते हैं, तो आपको अभी तक क्या क्या समस्याएं हुई है फास्ट फूड से?
3: मैं ऐसे तो ज्यादा नहीं खा लेती लेकिन खाते हैं।
0: अच्छा खाती हैं, तो आपको फास्ट फूड की लत नहीं लगी राधा जी? आपको फास्ट फूड की लत नहीं लगी, आप एडिक्ट नहीं हुई उसकी, आदत नहीं पड़ी?
3: नहीं वो तो लत नहीं लगी लेकिन खाते हैं मैम कभी कभार।
0: अच्छा कभी कभार खाती हैं, चलिए अच्छा लगा सुन के कि आप कभी कभार सुनती हैं, कभी कभार खाती हैं, आदत ही नहीं है। राधा जी आप ऐसे ही कॉल करते रहा करिए, बात करके अच्छा लगा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, डायल करिए 7376 80 40 90 7376 80 40 90 और जुड़ जाइए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम युवाणी से लाइव, और पहुंचाइए दुनिया के हर कोने

0: तक अपनी आवाज, अपने विचार, अपनी सोच। देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताइए और हमारे सुनने वाले सभी दोस्तों को बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: जी मेरा नाम कृष्ण शर्मा।
0: कृष्ण शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं यही अयोध्या दशरथ महल से।
0: कृष्ण महल अयोध्या से बात कर रहे हैं आप
1: जी? दशरथ महल।
0: अच्छा, दशरथ

0: जी दशरथ महल।
1: अच्छा दशरथ महल से।
0: जी मैम।
1: तो कृष्ण शर्मा जी, आज का जो हमारा युवा संवाद का विषय है वो है जंक फूड और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं।
0: जी।
1: तो आप ये बताइए कि जंक फूड की जगह कौन से हेल्दी विकल्प अपनाए जा सकते हैं कि हम जंक फूड और फास्ट फूड को इग्नोर करें, उसको ना खाएं और उसकी जगह पर हम कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो।
0: जी आम।
1: आम खा सकते हैं।
0: जी।
1: और कुछ?
0: केला।
1: जी। और फ्रूट्स के अलावा क्या खा सकते हैं? आम हो गया, केला हो गया।
0: और फ्रूट्स के अलावा जैसे केला।
1: चलिए चलिए कृष्ण जी। जी जी बिल्कुल, फ्रूट्स खा सकते हैं हम जंक फूड के जगह। और
0: अनार।
1: हाँ जी हाँ जी, कृष्ण शर्मा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही कॉल करते रहा करिए। थैंक यू।
0: और मैं एक चीज और बताना चाहेंगे।
1: जी जी
0: जी, हम ब्लाइंड हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, आप ब्लाइंड है और आपने कॉल किया है।
0: जी जी, हम संगीत से भी जुड़ चुके हैं मैम।
1: क्या बात है, बहुत बहुत आपने।
0: यहाँ मंदिर में कीर्तन करते हैं मैम।
1: सैल्यूट है कृष्ण जी, आपको सैल्यूट है, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया है और आप आकाशवाणी अयोध्या में आपने कॉल किया है, हम तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को कि आप ब्लाइंड होके भी आप प्रोग्राम हमारा सुनते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कृष्ण शर्मा जी।
0: मैम हारमोनियम बजाते हैं।
1: बहुत खूब, कभी आइएगा जरूर, विजिट करिए आकाशवाणी अयोध्या और अपनी प्रतिभा को निखारिए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ दोस्तों, डायल करते रहिए 7376 80 40 90 और जुड़ जाइए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम युवावाणी से लाइव और पहुँचाइए लोगों तक अपने विचार अपनी बातें। देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ गया है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
2: जी मैम नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका।
1: प्रियंका जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप। जी
2: अयोध्या डाभा सीमर से।
1: अयोध्या डाभा सीमर से बात कर रही है, स्वागत है आपका प्रियंका जी कार्यक्रम युवाणी में। आज का जो हमारा युवा संवाद का विषय है वो आपको पता है।
2: जी मैम।
1: हाँ तो बताइए, जंक फूड और फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान हो सकता है।
2: मैम फास्ट फूड खाने से तो फिर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो है। और हम तो खाते हैं बराबर, हमारी लत लग गई है।
1: अच्छा आप करती क्या हैं?
2: मैम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अभी फाइनल हुआ।
1: अच्छा प्रियंका जी आपका बीए फाइनल हो चुका है।
2: Yes.
1: तो आप हमें ये बताइए प्रियंका जी कि पैकेट पर लिखे न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो होते हैं, पैकेट पर पीछे लिखे होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ना कितना जरूरी होता है हमारे लिए।
2: Yes,
1: कितना जरूरी होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ना। हेलो।
2: हाँ मैम।
1: हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो पैकेट पर जैसे जो जंक फूड आते हैं तो उसके पैकेट पर पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं ना, तो उसको पढ़ना कितना जरूरी है हमारे लिए।
2: मैम पढ़ना तो बहुत जरूरी है जो है।
1: आप पढ़ती हैं?
2: यस मैम।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ती हैं तो उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है ना, कितना फैट है, कितना कैलोरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी, ऐसे ही कॉल करते रहा करिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू मैम, आज हमारी कॉल पहली बार लगी, हमने बहुत खुश है।
1: बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप ऐसे ही कॉल करते रहा करिए। थैंक यू।
2: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों आप भी डायल करिए 7376 80 40 90 और जुड़ जाइए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम युवाणी से लाइव और अपनी बातों को पहुंचाइए दूर दूर तक लोगों के साथ। देखते हैं कौन जुड़ गया। हेलो चांदनी जी नमस्कार, कैसी हैं आप।
3: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप गोंडा से बात कर रही हैं, हमें आपकी आवाज मुझे पहचानी पहचानी लग गई थी। अरे वाह आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, आपने फास्ट फूड छोड़ दिया है क्या।
3: क्या
1: आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, तो आपने फास्ट फूड और जंक फूड खाना छोड़ दिया है क्या।
3: नहीं खाते हैं बस रोज नहीं, कभी कभी।
1: अच्छा कभी कभी खाती हैं, तो कभी कभी वाला कब छोड़ेंगी आप।
3: वो तो नहीं छूट पाएगा।
1: चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि आपको फास्ट फूड की लत

0: लग चुकी है, कभी कभी खाती हैं, क्योंकि आपने अभी कहा लत, मैं इसलिए कह रही हूँ एडिक्टेड हो चुकी हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि वो नहीं छूट सकता है। तो आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है कि मतलब कैसे हम छोड़ सकते हैं उसको, या फिर उसकी जगह कोई हेल्दी चीज अपना सकते हैं?
1: हाँ मैम, हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम वही चीज अपने घर पे बनाए, फास्ट फूड जंक फूड कोई भी चीज, तो हम अगर घर पे बनाकर खाएंगे तो मतलब वो उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना बाहर वाला नुकसानदायक होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं कि नहीं अभी बच्चों को?
1: मैम अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते कॉल लगा रहे हैं।
0: क्या बात है, फिर बच्चों को भी सिखाइए कि फास्ट फूड और जंक फूड से थोड़ी सी दूरी बना के रखे, ठीक है चांदनी जी? ओके, बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही कॉल करते रहा करिए चांदनी जी।
1: नमस्ते।
0: जी हाँ दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए और समय निकल ना जाए तो आप भी डायल करिए 73-76-80-40-90 और बात कर दीजिए अपने दोस्त से। हेलो, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी है आप प्लीज पहले रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाइए, अदरवाइज हमारी आपकी बात नहीं हो पाएगी। हेलो,
2: बोलिए।
0: आप रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए या फिर आप रेडियो बंद कर दीजिए। अपना नाम और पता बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं रवि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, अयोध्या दशरथ नगर एरिया से।
0: रवि त्रिपाठी जी, अयोध्या से बात कर रहे हैं आप?
2: यस मैम।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। आज का युवा संवाद का जो विषय है वो है जंक फूड और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। आप प्लीज रेडियो बंद कर दीजिए, फिर दूर हो जाइए।
2: बंद कर दीजिए
0: जी। तभी बताइए, आप जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं?
2: नो मैम, ये रियली बहुत ही अननूट्रिशियस होता है, ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, इससे डेवलप नहीं होता शरीर का। बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो अच्छी खान पान की आदतें विकसित करने के लिए आप कौन कौन से सलाह देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले सभी दोस्तों?
2: जो होममेड चीजें खाना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए बच्चों को, और बड़ों को भी दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि इससे पेट की बीमारियां होती हैं, डेवलपमेंट नहीं होता शरीर का।
0: बिल्कुल, चलिए रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ऐसे ही कॉल करते रहा करिए आप।
2: थैंक यू।
0: ओके जी हाँ, हो गया है समय एक छोटे से अंतराल का, तो सुनिए आप कुछ महत्वपूर्ण संदेश और विज्ञापन, लौटते हैं बस कुछ ही मिनटों में।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
5: और भाई साहब क्या हाल है?
6: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
5: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
6: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो जुड़ जाइए फटाफट से कार्यक्रम युवावाणी से और डायल करते रहिए 73-76-80-40-90 और बात करिए अपने रेडियो दोस्त से, क्योंकि जब हम Hello. आते हैं तो सिर्फ आपके लिए आते हैं। हेलो।
7: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम और अपना पता बताइए हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को।
7: मेरा नाम सोनू हुआ।
0: सोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
7: अयोध्या से, रानूपाली।
0: आप रानूपाली अयोध्या से बात कर रहे हैं?
7: हाँ जी, हाँ जी।
0: सोनू जी, आज का जो हमारा विषय है बात करने का युवा संवाद का, वो है जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं।
7: आवाज आपकी बहुत कम आ रही है।

0: हेलो, आपको आवाज़ मिल
1: हाँ
0: रही
1: जी,
0: है?
1: हाँ जी, हाँ
0: मैं ये कह रही
1: जी
0: हूँ कि आज का जो युवा संवाद का विषय है वो है कि जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। तो आपको क्या लगता है कि स्वाद के लिए सेहत से समझौता करना सही है?
1: जी एक्चुअली क्या है कि मैं फास्ट फूड खाता ही नहीं हूँ,
0: आप
1: और
0: खाते
1: मैं
0: नहीं?
1: दूसरे नहीं मैं और दूसरे लोग को भी मना करता हूँ कि नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, जिम करता हूँ और उसमें फास्ट फूड मना है। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप फिटनेस कोच हैं कि आप ध्यान देते
1: जी
0: हैं? हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: हाँ जी सोनू जी, आप फिटनेस कोच हैं या फिर आप मतलब ध्यान देते हैं अपने फिटनेस पर?
1: नहीं, फिटनेस के, और मैं खाता भी नहीं, पहले से भी नहीं हूँ, ये पसंद ही नहीं है फास्ट फूड।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सरप्राइज करने वाली बात है कि आप सच में फास्ट फूड नहीं खाते हैं। अच्छा लगा
1: जी
0: आपसे बात करके सोनू जी। ऐसे आप कॉल
1: थैंक
0: करते
1: यू,
0: रहा
1: थैंक
0: करिए और बात करते रहा करिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग।
1: यू।
0: जी हाँ दोस्तों, वही पुराना नंबर 7376 80 40 नंबर। तो देर न करिए क्योंकि समय है बहुत कम। डायल करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, नाम अपना बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी, मैं दीवान सिंह बोल रहा हूँ, गोंडा उत्तर प्रदेश से। दीवान
0: जी नाम बताइएगा।
2: सिंह, दीवान,
0: दयाल सिंह?
2: दीवान
0: देवांश सिंह बात कर रहे हैं आप?
2: जी,
0: जी देवांश जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं अभी स्टूडेंट हूँ।
0: आप स्टूडेंट हैं तो आप तो फास्ट फूड खाते ही होंगे, है ना? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स खाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कुछ कुछ तो खा ही लेते होंगे। क्यों?
2: ज्यादा नहीं खाते, मतलब अब वैसे भी शरीर पे ध्यान देना चाहिए, फिटनेस पे, क्योंकि बीच में मेरा वजन बहुत
0: पक्का
2: ज्यादा
0: ज्यादा
2: हो
0: नहीं
2: गया था।
0: खाते हैं या फिर ऐसे कह रहे हैं? सच सच बताइएगा देवांशी।
2: सच बता रहे हैं हम।
0: अच्छा चलिए, फिर तो अच्छा लगा कि ज्यादा नहीं खाते हैं आप स्टूडेंट होकर ही। तो अच्छा ये बताइए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडिक्टेड हो चुके हैं फास्ट फूड और जंक फूड के लिए, तो वो इस एडिक्शन को कैसे छुड़ा सकते हैं? क्या उसकी जगह कोई हेल्दी फूड कोई ऑप्शन होगा जो आप बताएं?
2: वो हेल्दी फूड कोई जंक फूड जैसा, मतलब जैसे उनको टेस्टी स्पाइसी चटपटा पसंद है, तो हेल्दी फूड को उस तरह कन्वर्ट करके खाएं, और साथ में एक्सरसाइज योगा रूटीन करें जिससे उनका मतलब माइंड में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, मौसमी फल खाने चाहिए, है ना?
2: यस मैम,
0: चलिए देवांश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे कॉल करते रहा करिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग।
2: थैंक्स।
0: जी हाँ दोस्तों, वही पुराना नंबर 7376 80 40 नंबर। फटाफट से फोन उठाइए और डायल कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ कार्यक्रम युवावाणी में। हेलो, सबसे पहले अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो प्लीज आप अपने रेडियो सेट से दूर हो जाइए या फिर उसको बंद कर दीजिए। और हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप लोग रेडियो ऑन करके फोन मत करिए, अदरवाइज हमारी आपकी बात नहीं हो पाएगी। हेलो
3: हेलो
0: जी, अपना नाम और पता बताइए हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को। कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं आप?
3: नमस्ते,
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
3: निकुला गोंडा से बोल रहे हैं।
0: गोंडा से कहाँ, कौन बात कर रहे हैं आप?
3: सुशील सिंह।
0: सुशील सिंह, अच्छा जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। आज का जो हमारा युवा संवाद का विषय है वो है जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। हाँ जी, तो ये बताइए कि जंक फूड और फास्ट फूड की जगह कौन से ऐसे हेल्दी विकल्प हम अपना सकते हैं कि हमको जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन ना करना पड़े और हम हेल्दी फूड खाएं? कॉल ड्रॉप हो गई, तो आप हार नहीं मानिए, समय बहुत थोड़ा सा है और बातें हमें आपसे ढेर सारी करनी है, इसलिए डायल करते रहिए वही नंबर 7376 80 40 नंबर। देखते हैं हमारे पास किसकी कॉल आ गई है। हेलो, हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम और पता बताइए।
4: जी हम ईशा बोल रहे हैं राठवेली से।
0: जी कौन?
4: हम ईशा बोल रहे हैं राठवेली से मैम।
0: ईशा
4: जी, ईशा, ईशा।
0: चलिए ईशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। आज का जो युवा संवाद का विषय है ना वो है जंक और फास्ट फूड।

0: होने वाली समस्याएं।
1: जी मैम
0: तो आप बताइए जल्द। हाँ जी ये विषय ना बहुत जरूरी है इस पर बात करने के लिए, है ना? तो जंक और फास्ट फूड से बचने के लिए ऐसे क्या विकल्प हो सकते हैं जो कि हम अपनाए और हेल्दी रखें खुद को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें?
1: पहली चीज तो क्या है ना मैम, फास्ट फूड तो हम खुद ही बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ, मैं मेरा एक दोस्त शकील है और शेजी भाई हमारे हैं, तो अक्सर जब मिलता है तो शाम में हम लोग खुद खा लेते हैं, लेकिन फिलहाल गलत चीज है, इसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे कि इसको मतलब इस चीज से छुटकारा पा सके कि आप बहुत ज्यादा मत खाएं, थोड़ा लिमिट में रहें, लिमिट में खाएं चीजों को?
1: नहीं, कभी कभार हो जाता है तो खा लिया जाता है मैम।
0: अच्छा,
1: तो लेकिन जब खाते हैं तो कई लोग हैं साथ में, तो बाजार में नंदन चाट वाले हैं।
0: जी
1: हाँ, तो उनके यहाँ खा लेते हैं, नहीं तो रेहान भाई हमारे चाट बनाते हैं बहुत बढ़िया।
0: अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक्स फॉर कॉलिंग, ऐसे ही कॉल करते रहा करिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: ओके जी हाँ, डायल कर लीजिए 7376 80 40 नंबर और जुड़ जाइए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम युवाणी से। दोस्तों, जब आपकी बैक टू बैक कॉल आती है ना तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है और लगता है कि पूरे दिन की मेहनत सफल हो गई है। देखते हमारे साथ कौन जुड़ गया। हेलो
2: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम और पता बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
2: जी मैम, मेरा नाम द्रौपदी है, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ।
0: द्रौपदी जी, आपने बस्ती से कॉल किया है, बहुत अच्छा लगा। आज का जो युवा संवाद का विषय है वो है कि जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। तो फास्ट फूड तो आप, जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं, जैसे हम नूडल्स खाते हैं, है ना, वगैरह वगैरह चीजें खाते हैं, टिक्की खाते हैं, चाट खाते हैं।
2: जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए हम लोगों को।
0: बिल्कुल,
2: बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे मोटापा बढ़ जाता है और
0: आज के युवा मोटापा के शिकार बहुत हो रहे हैं, है ना?
2: क्या
0: आज के युवा मोटापा के शिकार बहुत हो रहे हैं फास्ट फूड के सेवन की वजह से?
2: क्योंकि जंक फूड और फास्ट फूड में ना वो
0: बिल्कुल
2: कौन से मसाले अनियमित मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए कई सारी बीमारी हो जाती है।
0: अरे वाह द्रौपदी जी, आपने ना बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है मसालों की, तेल की, नमक की, है ना, वो अनलिमिटेड वो लोग डालते हैं, सिर्फ नमक को थोड़ा सा लिमिट में रखते हैं,
2: अनियमित मात्रा में उसमें छोड़ दी जाती है।
0: क्या बात है द्रौपदी,
2: कई सारे हमारे बॉडी में उसके साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप ऐसे ही कॉल करते रहा करिए, ठीक है? थैंक्स फॉर कॉलिंग।
2: यस मैम।
0: जी हाँ दोस्तों, डायल कर लीजिए 7376 80 40 नंबर और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ कार्यक्रम युवाणी में। हेलो
3: मैम
0: जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: राजबली यादव, अयोध्या मक्खापुर से मैम।
0: जी नाम?
3: राजबली यादव, अयोध्या मक्खापुर से।
0: राजबली यादव जी, आज का जो युवा संवाद का विषय है वो है जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। तो आप बताइए, खाते हैं कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, कॉल आप ऐसे करते रहा करिए और देखिए हमारे साथ कोई और जुड़ गया जिनसे हम कहेंगे हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, नाम क्या है आपका और कहाँ से बात करें हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को बता दीजिए।
4: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
4: मैम मेरा नाम दीपक कुमार है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मैडम मैं अयोध्या एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं?
4: जी मैम।
0: चलिए हमारे पास समय बहुत कम है तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, आप अगले युवा संवाद कार्यक्रम में जरूर कॉल करिएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग।
4: ओके मैम, बाय।
0: ओके बाय बाय। दोस्तों, इसी के साथ आज का युवा संवाद सजीव फोन इन यही समाप्त करने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं विषय पर हुई चर्चा ने आपको कुछ सोचने, समझने और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा जरूर दी होगी। और अब विदा लेने से पहले जरा कल के कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक हो जाए। सेगमेंट चर्चा में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय का तकनीकी शिक्षा के माध्यम में कौशल उन्नयन। अगले सेगमेंट स्थान में चलेंगे कैनबरा, फिर होगी शब्दावली और प्यारे प्यारे गीत। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे को इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या नमस्कार।
5: पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए?
5: मैं फसल की नहीं, एनपीएस

0: संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें।
2: भारती से बोल रही हैं।
3: है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स यश ITI दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत युवा संवाद। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी आपने हमें ट्यून किया है। शाम के समय में अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम लोक संगीत का।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
2: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस किसानी गीत के साथ। अंजनी कुमार और साथियों ने इसे अपनी आवाज दी है।

कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला किसानी गीत, रामशंकर और साथियों की आवाज में।

0: आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6:00 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये वर्षा गीत सरला सिन्हा और साथियों की आवाज में।

0: आज से तुम भी स्कूल जाओगे। नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
1: मम्मी, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
2: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम। अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: कार्यक्रम लोक संगीत में अब आपको सुनवाते हैं सुषमा गुप्ता और साथियों की आवाज में ये पूर्वी गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: विंध्यवासिनी त्रिपाठी की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये निर्गुण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप

0: Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर शाम के 6:10 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी

0: कोई नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कार्यक्रम श्याम सुहानी में सबसे पहले सुनते हैं ये फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म रॉकी, क्षमा कीजिएगा, फिल्म का नाम है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। गायक कलाकार हैं नवराज हंस और हर्षदीप कौर। गीत को लिखा है गुरप्रीत सैनी ने और संगीत है रोचक कोहली का।

कार्यक्रम शाम सोनी में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। गायक लगाकर थे नवराज हंस, हर्षदीप कौर, और गीत को लिखा था गुरप्रीत सैनी ने और संगीत था रोचक कोहली का। कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं अगला गीत फिल्म रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी से। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत प्रीतम का।

0: ये गीत अभी आपने सुना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से, अरिजीत, श्रेया, शादाब और अल्तमस की आवाज़ थी। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया प्रीतम ने। इसी के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा सानेता

0: काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके संधयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक संबंधेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्त राष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलंबित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्व चषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख संधयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा सानेता काइचित्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सुत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशो विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः, ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमंत्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता, निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम्

0: आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत् तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदास्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम् देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूतिः वीबीजी रामजी अधिनियमः 20-25 आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशः 2020 वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान् बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान् बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः
2: FM 101.9 पर आपने चुन किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा

0: उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
2: मम्मी मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
3: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
4: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये छपरहिया गीत कमला प्रसाद कमल और साथियों की आवाज में।

0: जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। बब्बन निषाद और साथियों की आवाज में ये निर्गुण सुनिए।

0: इसी के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 पर। अभी आप सुन रहे थे गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम, और अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, किसान वाणी।

0: किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: पंचो जय हिंद। आज भैया खेती किसानी के बात लेके हम आप हाजिर हैं आप सबके सामने। बात यह है कि ये महीना तो जुलाई है, जुलाई में हमें सबको का कहा करे छे, कौन कौन कृषि कार्य बाटे या का हमें सब अपने मन में बैठाए लिए हैं, और सोची थी आजो सोचे बाटे कालो सोचे बाटे। बोल भैया आज सोच लीन जाए तो फिर बहुत फायदे में क्या है से भैया, अगर पहले से सोच लीन जाते कि कौन कौन काम आगे करे बाटे तो वो बहुत आसानी से बहुत सुकून से बड़ा सहूलियत मिला था कि कैसे कैसे काम किन जाए। तो भैया देखो, ये खरीफ का फसल है, ये हमारा जो है मुख्य रूप से धान वाली फसल है, हैं तो धान के रोपाई तो चला था जोर से, हैं मूल भैया यह के साथ है मक्का भय अरहर भय। अरहर भैया, अरहर देखो भैया जुलाई के प्रथम सप्ताह तक तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो द्वितीय सप्ताह तक भी जल्दी से जल्दी अरहर की बुआई कह लें भैया, है ना। कहे से कि भाई अरहर तो बहुत दलानी में बहुत मुख्य फसल होता है, और अरहरी के जान लो कि जैसे प्रजात के नाम याद आएगा तो बता दें जाते हैं कि पूसा नयन है, नरेंद्र अरहर एक है, आज़ाद अरहर है, अंकुर है, निर्मला दुर्गा है। इ तमाम तरह के जो चार छठ अरहर हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, पंचे बहुत पसंद करते हैं, तो अरहर जल्दी से बोलें। वही भैया ध्यान दें कि जो है लाइन से लाइन भाई, अब तो छिटका बुधी बोत रहे सब तो नहीं जमत रही, मामला ठिकात नहीं रहा। मूल भैया अब तो सेली बनाए के बोए में फायदा ही है कि अगर पानी लागे के कोनो संभावना नहीं रहता, नाली नाली हो तो पानी निकल जाते है, एक किनारे कही ली थी ये लेवे लाइन से लाइन मतलब चार छः फीट का जो दूरी रहा था, और पौध से पौध लगभग एक फीट का दूरी रहा था, और बीज लगभग 2 से 3 किलो ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के दर से लागत है। तो मूल भैया जो है हम सब अरहर के साथ साथ उड़द मूंग बजरा भी बोई ली थी, अलग अलग भी बोई थी, सोयाबीन का हो गया है, तो यह तरह से तमाम हम सब फसल बोई थी। मूल भैया याद आई है कि भाई सावा कोदो का नाम सुना हो ना, तो सावा कोदो टांगू ने के बुआई होते रहे बहुत पहले, कम खर्च में बढ़िया फायदा हो जाता रहा माना, लेकिन भाई आप तो भाई मोटा अनाज के कही जाते हैं और बहुत लाभकारी है, अब एक फिर दिन लौटता है हमें सब सामा कोदो के बोवा जाए, है ना। अब तो देखब नोहर हो गया, लेकिन अब बोवा जाए तो सब एकदम बढ़िया हो जाए। भैया बोल भैया ध्यान रखो कि बरसा की टेमा है तो कहूँ अगर खेत खाल है तो पानी लग जाए, और ऊँच है तो पानी सरक जाए, ये लिए भाई मेड़बंदी कर बहुत जरूरी बात है, तो मेड़ बंदी रहे तो फिर जहाँ हमारे लोग चाहे जितनी आवश्यकता है वहाँ पानी रोक सकी थी, और बाकी अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो कहीं निकाल सकी थी। तो यह तरह से हमें सब जो है खेती के कीन जाए। अच्छा अब एक बात और है, जो पहले सब बोत रहे धान छिटुआ धान बोत रहे, अब वो का सीधे तरह से भी धान के बुआई पंचे शुरू किए हैं, है जब हो जाते ना पल्ले मारा जाता रहा जो है तो वो कंछा मारत रहा, अब सीधा धान की बुआई भी हमें सब करी थी और कीन जाए, एक साथ है बजरा भी बो जाते। और हे भैया ध्यान दियो कि ये वैज्ञानिक तौर तरीका है, तो वैज्ञानिक कृषि जो तकनीकी बात है यही कि अपनाए कि हमें सब

जौन लाइन से लाइन बोक बा कतार से कतार बोक बाटे वका हम सब ध्यान दीन जाए। और लगाओ जैसे अब पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा भी पंछी लगाओ मतलब लाइन लाइन से कतार कतार से तो वही में फायदा है ताकि उनका प्रकाश संश्लेषण भी बढ़िया हो जगह भी बढ़िया मिले। और जब तक बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता तब तक बीच में हम सब का उपयोग कर सकी थे सघन बागवानी मिलवा खेती के तौर पे हम सब कर सकी थे है ना भैया। गन्ना है गन्ना देखो अब गन्ना जो है पानी पाएगा अब बढ़े तेजी से लेकिन वही के साथ साथ भैया घर खरपतवार एकदम गन्ना में घर हो जाए तो यहो को भैया खरपतवार का व्यवस्था सोच लो निराई गुड़ाई दवाई जैसे भी हो व्यवस्था करो। अब भैया कहा जाता है ना कि जो सीधी बुआई छिटकई विधि से बोत रहे अब ये थोड़ा भदई होत रही पहले याद है ना भैया बूढ़ो दादा लोग हरे जो है इन सब से पूछो तो बताइए कि भदई धान कैसे बोआ जात रहा और जल्दी से हो जात रहा। तो अठे कहावत याद आई गए कि कुलहर भदई बोवो यार और तब चूरा के हो बहार यानी कि अगर भदई बोए दो तो चूरा बहुत टीम से मिल जाए चूरा खाए में है। और यह तरह से भैया हमें सब खेती किन जाए है ना। और सावा का जो बात रही सावा के देखो अब तो नई नई प्रजाति आवत बा वैज्ञानिक जो शोधित है अपन मूल भैया कौनो बीज वो आप तो शोधित कही कि वो जैसे वीएल 207 है वीएल 172 है और भादली है भादो है सावा और अच्छी प्रजाति और है शोधित कहके और करबंडा जिम से भैया शोधित किया जाता है 2 ग्राम प्रति बीज के दर से और जून जुलाई में एक बो जाते हैं भैया। और भैया होता कि अब दलहन तिलहन के भी बहुत जरूरी बात है दलहन में अरहर हो गया तिलहन हो गया भैया तो ये प्रथम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक बो दिन जाते हैं है ना। तो ये लिए देर न करे एक बाटे हमें सब जो है खरीफ में जो फसल बोए बाटे टीम टीम से हाँ भैया ये कट्ठे से तो पूरा खेत और पूरा बीज तो बोए न जाए बारी बारी से जहाँ जैसे ऊंचा है जहाँ जैसे जोतास आवत बाटे जहाँ जैसे नमी है जहाँ जैसे पानी का व्यवस्था है रोपाई है वह हिसाब से कीन जाए है ना। तो बादर बांध की खेती तो हो ना भैया बादर देख के खेती होत है कि बाधों की छठ चांदनी जो अनुराधा हो भादों की छठे चांदनी जो अनुराधा होए उबड़ खाबड़ बोए दो अन्न घनेरा होए। तो भैया देखो यह तरह से घाक कहावत भी मशहूर रहा है और समय समय पे याद आवत रहा थे हैं। और यह नहीं हम ही सब नहीं जो घरे दिन बहनी लोग है ना यो अगवारे पिछवारे आंगन जो में अपन जिसे छोट छोट सब्जी के जैसे मिर्चा भय भिंडी भय लौकी भय भाटा भय टमाटर भय और सेम बहुत पसंद हो तक सेम जो है चोखा भय सब्जी बाटे खाटे खाए बाटे तो ये सब हरी धनिया बोए दिन और यह सब तमाम तरह के जो है अपने गवार पिछवार जहाँ बाटे वहाँ बोए देते हैं। कान भय तो कानों बोए हुए तो जब जामे शुरू हो ही क्यों भैया। तो भैया यह तरह से हमें सब ये बस खाला माँ हमें सब ध्यान दिन जाए तो खेती बढ़िया से हो जाए। भैया फूल गोभी की खेती जो ना गई थी वो तो वो कही जात है और एक अलावा छनेुआ कोहड़ा होते छुआ है ना और नेनुआ तरोई ये हो सब कहे थे मेरी लोग लगाओ थे बहुत बढ़िया से। बोल भैया ध्यान रखो कि खरपतवार जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया से सोच ली जाए और भाई ध्यान दो तो फिर जो सड़ी गोबर का खाद है ना और जो यूरिया है पोटास है फास्फोरस है ये होकर हर फसल के जो अलग अलग जो संस्कृत मात्रा बाटे उचित रूप में ओका दिन जाए। और आगा करते हैं हम सबके याद आवत है वही कहावत की सर्व तपे जो रोहड़ी सर्व तपे जो मूर और परिवा तपे जो जेठली उपजे सातो तूर यानी कि सगरों प्रकार का अन्न जो है उपजत है हैं। तो यह लिए भैया हमें सबके ध्यान दे बाटे और मन तन मन धन से मेहनत से अपन खेती गृहस्थी करे बाटे। मूल भैया ध्यान रखो कि बरखा के टेम है बरखा टेम बहुत कीड़ा मकोड़ा लागत है कीट पतंगा लागत है बहुत उधिराई जाते है ना जो तनको बरसात होगी देखो पाखी उड़ जाते एकदम घर में जहाँ जहाँ जहाँ उजियार रहते हैं रास्ता पावत हैं जंगला किराए कि दरवाजा किराए किवाड़े किराए जैसे मुक्का खुला रहा था वहाँ पहुँच जाते हैं और एकदम भैया बड़ा
अलिछ हो जात है। तो भैया ये कहता है हमें सब सजग रह जाए, और जो रोग लागत है फफूद लागत है वो कहते फंगिसाइड जो है और जैविक कीटनाशक जो है रासायनिक दवाइया ये सब समय समय पर देखा जाए और

0: अपने उचित मात्रा में अपने फसल पे लगावा जाए, छिड़काव की जाए। एक बात और ध्यान दो, कहो बहुत पंचे भैया सनई खेती किए है, और सनई खेती सनई रहचा तो खेत में मिलावे वाले होता है तो हरी खाद अपनाया जाता है। मूल भैया सनई खेती कुछ लोग रोक लेते हैं बिस्सा दो बिस्सा, तो रोक लेते हैं जब सावन में पानी जब बरसत है, कढ़ाई भर जात है, तो सनई जब हो जात है तो उका काट के तो पानी में डुबो दिए थे, तो चार छह दिन मा हफ्ता दिन मा वो सड़ जात है। जो सड़ जात है तो का अधिक किनारे खींच के बहुत बदबू देते भैया। मुला देखो किसान है कि ये सब करत है और हमें सब ये सब कैल पाई थी, तो वो का काछ काछ एक किनारे करत है, फिर वही थोड़ा थोड़ा मुठ्ठा में लेके और एक बाद वही पानी में झकझोर झकझोर झकझोर सनई का साफ कह देते हैं, तो सन पटसन हैं सुतरी तैयार होता है। वही से बाद खटिया बिछोना हमें सबको तैयार होता है। ये लिए भैया कहा गया, खेती तो थोड़ी करो, मेहनत करो सवाए, और राम चाहे मैं मानुष को घाटा कब होने जाए, चाहे जोन खेती करो तन मन से करो। अब भैया देखो हम चली थी अठे आप सबका बात पर कही जोन पहले से बाटे हमने सबका, तो वो एक बार सुनवा गया, फिर दोबारा हम सुनवाए थे खरीफ सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन। एक बतावत है विशेषज्ञ के रूप में प्रदीप कुमार दलाल भैया, जो उनकी सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग कृषि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आवर है, और इनसे आलोक कुमार गुप्ता भैया बतिया रहे। भैया सुना जाए फिर आगे के बात बत कही।
1: पंचों जैसा अभी आप सुनें अपने सबके बीच में डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल भैया आवा हैं। आप हैं सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान सब्जी विज्ञान विभाग उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से। सबसे पहले तो आपके स्वागत करी थे अपने पंचायती में, साथ साथ आपसे जाना चाहिए अपने पंचन के बदे कि यह सैती जोन अपने पंचे भाई सब्जी के बुआई करत है उमन खरीफ सब्जी में लागे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बदे अपने सबका कोने मेर के व्यवस्था बनावक है। तो सबसे पहले तो यही बतावे कि खरीफ माह कौन मेर के प्रमुख कीट लागत हैं।
2: जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जो सब्जियां हैं इस सीजन में लगने वाली वो प्रमुख सब्जियां हैं लता वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू करेला लौकी, इसके अलावा जो भिंडी लगती है बैंगन लगता है सेम लगता है। तो इन सभी सब्जियों के अंदर जैसे अगर मैं लता वर्गीय सब्जियों की बात करूं तो दो प्रमुख कीट हैं, जैसे एक लाल कद्दू भृंग होता है, तो ये लाल कद्दू भृंग जो होता है इसका जो शिशु अवस्था होती है वो जड़ों पर हमला करती है, और जो इसकी वयस्क अवस्था होती है वो सीधा पत्तों पर हमला करती है, पत्तों में काफी बड़े बड़े छेद कर देती है, और जैसे ही जर्मिनेशन होता है फसल का वैसे ही इस कीट का हमला देखने को मिलता है, और काफी ज्यादा मात्रा में ये नुकसानदायक कीट होता है, फलों को ये मार देता है। और अगर हम बात करें फल मक्खी के बारे में तो फल जैसे ही कद्दू वर्गीय लता वर्गीय सब्जियों के फल आने शुरू हो जाते हैं तो इस कीट की मादा जो है फलों के अंदर अंडे दे देती है, जिससे जो है अंडों में से सुंडियां निकलती हैं और वो फलों को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं और सड़ा देते हैं। तो ये दो कीट जो है प्रमुख रूप से बेल वाली या लता वर्गीय जो सब्जियां हैं में नुकसान करते हैं। अगर हम बात करें भिंडी के बारे में तो भिंडी के अंदर प्रमुख रूप से चार कीट लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कीट जो उसमें लगता है वो तेला होता है। तेला जो है पत्तों के पिछली सतह में जो है रहकर रस चूसता है, जिसकी वजह से पत्ते किनारों से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसमें जो आकार है कप के आकार का वो दिखने लग जाता है, ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे पौधे की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, उनमें फलों का बनना रुक जाता है, और किसान को लगभग जो है 25-30% तक का नुकसान देखने को मिलता है। और इसी में ही जो है एक सफेद मक्खी कीट आता है, वो पिछिरा रोग का जो है प्रसार करता है, जिससे काफी उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक फल छेदक कीट भी लगता है, उसके परिणाम स्वरूप फल जो है मुड़े हुए दिखाई देते हैं, जो मार्केट में इसकी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती किसानों को, और किसानों को उत्पादन में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर बैंगन की फसल की मैं बात करूं तो बैंगन के अंदर दो महत्वपूर्ण कीट लगते हैं, एक तना एवं फल छेदक। तो ये कीट जो है इसके गुलाबी रंग की सुंडी होती है वो सबसे पहले तने पे हमला करती है, तना जो है मुरझाकर नीचे गिर जाता है और फिर फलों के अंदर जो है ये छेद करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है जिससे किसानों को लगभग 30-40% तक का नुकसान का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, देखें नुकसान की सामना अपने पंचे कम से कम करें के लिए तमाम मेर के प्रयास अपने सरकार के रहत भी है कि कैसे अपने भाई जो किसान पंच है उनका मेर मेर की सुविधा तमाम दवाई मा उनके भाई सुविधा देते हैं, तमाम तरह के अनुदान देते हैं। सबसे पहला तो जो आप बताओ तो लाल कद्दू भृंग, तो एमन एक नियंत्रण पे कोने मेर से अपने सबका व्यवस्था बनावे।
2: देखिए जितने भी प्रकार के कीट जो सब्जियों में लगते हैं

0: हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें हमें एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग करना है। एकीकृत कीट प्रबंधन में ना सिर्फ हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हम जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, सस्य क्रियाएं होती हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर लाल कद्दू भृंग की अगर हम बात करें तो इसमें मिट्टी के अंदर हम जो है खुरपी लेकर थोड़ी बहुत जो है खुदाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इस कीट की अवस्थाएं होती हैं वो मर जाती है और ये कीट कम से कम नुकसान करते हैं। इसके अलावा इसमें हम चूल्हे की बुझी हुई राख जो होती है उसका भी छिड़काव कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये कम जो है हमला कर पाता है। इसके बावजूद अगर ये कीट ज्यादा नुकसान करता है तब हम कीटनाशकों को रेकमेंड करते हैं, और उसमें भी कीटनाशक जैसे कि साइपरमेथ्रिन की लगभग 25 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। और आज के समय में जो है नए कीटनाशक आ रहे हैं तो इसमें साइंट्रा निलीप्रोल की 1.2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके इस कीट से बचा जा सकता है।
1: माने कि अपने पंचे यात्रा से बचाव कर सकते हैं, वह से बच सकते हैं। एक साथ साथ फल मक्खी की बात हो रही तो वह के भी भाई आप बतायो, लेकिन वह मन नियंत्रण के बदले अपने समय बचाव कैसे की जाए।
0: बचाव के लिए इसमें महत्वपूर्ण तरीका यह है कि जैसे कीट के जीवन चक्र की बात करें तो इसकी एक प्यूपा की अवस्था मिट्टी में रहती है, तो इसमें भी जैसे पिछले कीट की बात थी इसमें सेम यही हमें करना है कि मिट्टी में खुदाई करनी है जिसमें इसकी जो प्यूपा अवस्था है वो नष्ट हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारे ग्रसित प्रकोपित फल होते हैं उनको इकट्ठा करके हमें जो है जमीन में दबा देना चाहिए। तो ये एक तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस कीट के हमले को। दूसरा हमें क्या करना है कि इसमें क्यूलियो ट्रैप हम लगाते हैं। क्यूलियो ट्रैप आपको विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ जो कंपनियां होते हैं वो भी उसको बनाती हैं, तो प्रति एकड़ अगर हम 16 क्यूलियो ट्रैप लगा दें तो इसमें जो फल मक्खी का जो नर होता है वो हम पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और साथ में हम स्पाइनोसाइड को जो है गुड़ में मिलाकर उसका भी छिड़काव करते हैं, तो जिसकी वजह से हम इस कीट से नियंत्रण पा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साथ साथ देखे अपन भिंडी की बात होती रही, उमन फल भेदक की बात होती रही, तो यह के नियंत्रण के बदे अपने समय का कीन जाए।
0: भिंडी के फल भेदक के लिए हमें जो है सबसे पहले जितने भी ग्रसित फल हैं उन ग्रसित फलों को जो देखते हैं तो वो टेढ़े से दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े फलों को इकट्ठा करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा हमें जो कीटनाशक का स्प्रे करना है तो कीटनाशक में इमामेक्टिन बेंजोएट एक आता है कीटनाशक, जिसकी 60 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, और छिड़काव करने के लगभग 10 से 12 दिन बाद ही हमें फलों की तुड़ाई करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा, देखें अभी भिंडी में एक बात और अपने सबके पंचे हमेशा भाई देखा करते हैं कि लाल माइट एमन अपने सबके नियंत्रण के बदे का कुछ करे है।
0: अब ये लाल माइट जो है जाला बनाने वाली एक एक प्रकार का जंतु होता है जो पत्ते के पीछे रहकर रस चूसता है और जिससे सफेद छोटे छोटे धब्बे देखने को मिलते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी एक प्रेम्प्ट एक कीटनाशक आता है जिसकी 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जब हम छिड़काव करते हैं तो इस कीट से इस जंतु से हम बचा सकते हैं अपनी फसल को।
1: बहुत अच्छी बात है। अभी अपने समय देखो सेम के बाद की यात्रा, सेम अभी तमाम मेर के भाई नुकसान होते है जो उनकी पतंगा लागत है एमन जोन चेपा और सफेद मक्खी के बात होती रही, यह के नियंत्रण अपने सबके पंचे कैसे करें।
0: अब चेपा और सफेद मक्खी ये रस चूसक कीट होते हैं, पत्ते से नीचे की सतह से ये रस चूसते हैं और नुकसान करते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं कर पाता। तो इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम 15 से 20 एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है वो हम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लगा देते हैं, जिसके ऊपर ये आकर्षित होते हैं दोनों प्रकार के कीट और आकर चिपक कर मर जाते हैं। दूसरा हम नीम की खली का जो रस होता है 5 मिलीलीटर उसकी मात्रा लेकर प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, और अगर प्रकोप जब भी काबू में नहीं आता और प्रकोप बढ़ जाता है तो लास्ट में हम जो है इमीडेक्लोप्रिड की 5 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, यह तरह के हम समझते हैं अगर अपने पंचे जो आप बतावत हो आकाशवाणी योद्धा के बारे से इतना बढ़िया जानकारी पंचे सुनत है, गुने की कोशिश करें, समय पर ओके इस्तेमाल करिए, निश्चित है लाभ हुए। लेकिन यही के साथ साथ देखें फल छेदक के समस्या से अपने समय हमेशा जो उन पंचे है परेशान रहते हैं, उनके नियंत्रण अपने पंचे कैसे करें।
0: तो फल छेदक में जैसे बताया जाता है कि इसमें सबसे पहले पहचान करने की फल जो है मुड़े हुए दिखाई देते हैं भिंडी की फसल में, और इसमें जो है मुड़े हुए फलों को सबसे पहले इकट्ठा करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जो है हमें कीटनाशक के रूप में साइपरमेथ्रिन की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना। करना चाहिए।
1: बैंगन एक अच्छी फसल है, अपने पंचे तमाम यह तरह के फसल से मुनाफा लेते हैं, साथ ही साथ नीक पैदावार करते हैं, लेकिन बैंगन में तना और फल छेदक की समस्या अक्सर देखी जाती है। नियंत्रण के बजे अपने

0: इनसे का कुछ करें?
1: इस कीट के नियंत्रण के लिए जो है सबसे पहले हमें इसका एक फेरोमोन ट्रैप आता है, ल्यूसीलियो ट्रैप जिसको कहते हैं, तो 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसको अपने खेत में लगाना चाहिए। इसमें भी क्या होता है कि इस ट्रैप में जितने भी नर जो ये कीट होता है वो आकर पकड़ में आ जाते हैं, जिससे आगे इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, हमें जितने भी प्रकोपित टहनी और फल होते हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और लास्ट में हमें स्पाइनोसाइड की लगभग 75 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के लगभग 10 से 12 दिन बाद ही हमें फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। और इसके अलावा जिसमें इसी फसल में जो है हड्डा ब्रिंग भी लगता है जो सीधा सीधा पत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो इस कीट से भी नियंत्रण पाने के लिए हमें साइपरमेथ्रिन की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना।
0: कितना बढ़िया जानकारी हम समझे थे पंचन का आपके माध्यम से मिलत है, लेकिन खरीफ के सब्जी में लगे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बारे में तो बात कही भाई, लेकिन का कुछ यह मेरे के सजगवाही की बात करिए आप, जैसे अपने पंचे थोड़ा सा सचेत रहें, उनके फसल पर कोनो विपरीत प्रभाव न पड़े, साथे साथे उनकी जो फसल है वो बढ़िया सा होए।
1: देखिए, आप हमेशा जो है मौसम की निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब भी शुष्क मौसम होता है, जब भी नमी वातावरण में कम होती है, उस समय पर रस चूसने वाले कीट जो है जैसे कि थ्रिप्स, चुरड़ा जिसे कहा जाता है, तो मिर्च की फसल में बहुत लगता है। या फिर अगर मैं बात करूं माइट, जो अभी हमने बात करी उसके बारे में, भिंडी में जो लगता है, तो शुष्क मौसम में ये ज्यादा लगता है। इसकी निगरानी करने के लिए सबसे पहले किसान को जरूरी है कि सुबह सुबह अपने खेत में जाए और आड़ा तिरछा जो है लगभग घूमकर 10 से 20 जो है पौधों को सिलेक्ट करके पत्तों के नीचे देखे कि क्या उसमें उसको कीट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें भी क्या होता है कि हर फसल और हर कीट के हिसाब से एक आर्थिक कगार दर होती है। अगर कीट जो है आर्थिक कगार दर या उसकी पॉपुलेशन तक पहुंच जाती है, तब ही हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा नहीं करना पड़ता। तो ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना भी नुकसानदायक होता है, जिससे प्रदूषण होता है, जिससे हमारे फलों में और सब्जियों के अंदर भी जो है कीटनाशक के अवशेष जाते हैं और हमारी जितनी भी जनसंख्या उनको भी इसका नुकसान भोगना पड़ता
0: है। बिल्कुल, आपके बताई गई बात से तो हम समझित हैं, नुकसान कम से कम हुए और साथ ही साथ फायदा ज्यादा से ज्यादा हुए, यह मन कोनो शक सुबह नहीं ना। आप इतना बढ़िया जानकारी खरीफ सब्जी में लगे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बदे जो बतायो है, निश्चित है ओके लाभ अपने पंचे सुनिन है, गुनी है, अमल में लही है, तो जरूर मिले। आपका यह पंचायती में आवे के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल भैया, आप सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान सब्जी विज्ञान विभाग उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से इतना बढ़िया जानकारी अपने पंचन के साथ साझा किया है। हम आपका यही के लिए आकाशवाणी अयोध्या के वारी से दई थे बहुत बहुत

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: ये भैया, अब है ना, आप जो है विज्ञापन से पहले प्रदीप कुमार दलाल भैया का जो बातचीत रही आलोक कुमार गुप्ता के साथ, खरीफ फसल में सब्जियन के में जो प्रमुख रूप से कीट पतंगा लागत थे वका उपाय का जानकारी। और साचो भैया, अगर कीट पतंगा से बचा लीन जाए तो हमारे सबके जो सब्जी है ना बहुत बढ़िया हो, बड़ी अच्छी हो। तो ये लिए हम सब में जागरूक हो के ध्यान दे के मेहनत से सांस सवेरे जो है हम सब खेतवाई की जाए तो फसल अपने आप बताए कि जो है कौन रोग भी याद है और का का करे के चाहिए, तो वह तरह से हमें सब ध्यान दे जाए तो अच्छी फसल होए। अब भैया, अब देखो भैया, बरसात शुरू हुई है, जुलाई लाग गए और एकरे बाद जान लो बरसात हो तो ना सबका मन झूम उठत है, हैं तो वह आवत है धुन के पड़े रिम झीम बुनिया है ना। तो भैया यही तरह से हम आप चाहिए थे कि आप सबका एक ठो कजई सुनवाई

भैया हीरालाल यादव के और उनके साथी के स्वर में कजरी सुनो, मन पसंद आई है। और भैया देखो, अब चलत चलत हम आप सबका एक मौसम का हाल बता दी कि तापमान अधिकतम 34.5 सेंटीग्रेड जो उनकी सामान्य से 1.5 ज़्यादा रहा और न्यूनतम तापमान 26 जो उनकी सामान्य रहा 26 सेंटीग्रेड। सापेक्षिक आर्द्रता जो ना 81% अधिकतम रही तो 64% न्यूनतम रही। हवा गति 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिशा दक्षिणी और पूर्वी रही। वर्षा तो भाई भैया 3.8 मिलीमीटर लेकिन कुमारगंज के क्षेत्र में। अनुमान है कि 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने बादल छावा रही हैं और हल्की से मध्यम वर्षा कभी कभी हो सकत है। बोल भैया देखो, बाजार भाव चावल कामन 3,100 रुपया, उड़द काली 9,400 रुपया और चना देसी 6,500 रुपया, मसूर दाल मसूर जो है 7,200 रुपया, अरहर दाल 11,000 रुपया, आलू सफ़ेद 8,890 रुपया, प्याज लाल 1,900 रुपया, भाई टमाटर 2,090 रुपया, भैया जो है भिंडी है 1,500 रुपया, लौकी 1,180 रुपया, करेला 1,800 रुपया, केला पक्का जो है 2,885 रुपया और नींबू 5,800 रुपया, पपीता 2,800 रुपया, सेब 12,270 रुपया, अनार 8,000, आम 3,800 रुपया, गुड़बट्टी 5,250 रुपया, चीनी 4,150 रुपया।

0: भैया एक साथ साथ अब किसान पंजीयन कार्यक्रम सुनिए जो है कि धान की सीधी बुआई यानी DSR विधि और किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें अरुण कुमार वर्मा और जो है राम प्रकाश पांडे की बातचीत एक साथ गोवर्धन भैया की अनुमति दो। जय हिंद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं सभा में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बता देते हैं आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद रात 8:15 पर सुनेगा गीत गुंजन महफिल गजल। रात 9:15 पर 9:30 पर हेलो अयोध्या। आज रात 10:30 से सुनेगा महिला विश्व कप क्रिकेट T20 मैच में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका बीच लंदन में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। अब बात करते हैं हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। तो सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 7:30 पर अमृत कलश सुर संगम कार्यक्रम सुगम संगीत होगा। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम प्रणाम अयोध्य सुबह 8:30 पर जिसके अंतर्गत आज की बात का विषय होगा अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों में सुधार और भेंटवार्ता सुनिएगा। बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्याएं और उसका आयुर्वेदिक समाधान इस विषय पर डॉक्टर आनंद उपाध्याय वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक से बातचीत करेंगे सदक हुसैन। सुबह 9:00 से सुनिएगा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत जिसके अंतर्गत आपको सुनाए जाएंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गाने। 9:30 पे हेलो अयोध्या कार्यक्रम होगा। सुबह 10:00 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे दिन में 12:30 से। दिन में 1:00 से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा गीतांजलि कार्यक्रम दिन में 2:00। 2:30 पे अंगना कार्यक्रम जिसमें कल आप सुनेंगे चर्चा बेटियों को सिखाएं आत्मरक्षा के तरीके और मुद्रा योजना पर भी जानकारी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण शुक्ल से कहानी सुनिएगा काल कोठरी से मुक्ति। दिन में 3:00 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। युवाणी कार्यक्रम कल शाम 5:00 से जिसमें चर्चा होगी अल्पसंख्यक समुदाय का तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उन्नयन। साथ ही स्थान सेगमेंट के अंतर्गत कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिएगा। शब्दावली भी इस कार्यक्रम में होगी। कल शाम 5:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम 6:10 पर शाम सुहानी कार्यक्रम 6:30 पर गूंजे स्वर गांव के कृषि जगत कार्यक्रम 6:45 पर जिसमें चर्चा होगी धान की सीधी बुवाई यानी DSR विधि। इसके अलावा एक भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विषय पर अरुण कुमार वर्मा से बातचीत करेंगे राम प्रकाश पांडे। कल रात 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन 9:15 पर कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम होगा। तो श्रोताओं ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 पर। अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा

0: केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
5: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम की ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से

0: क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 पर। अब आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: तो चूंकि बात आपके दूरदर्शन से जुड़ी है और साथ ही आपके कला से भी जुड़ी बातें हैं, आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आप फिल्मकार भी हैं। आपने थिएटर पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि किस तरह का थिएटर आपने किया और साथ ही जो हिंदी के बड़े बड़े लेखकों के नाटक मंचित किए गए या मंचित आज भी किए जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और समाज को बेहतर रूप से समझने में शौकिया रंगमंच की क्या भूमिका रही आपकी नजर में?
2: देखिए, ऐसा था कि हम तो कॉलेज में थे, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक हमारा यूथ फेस्टिवल होता था कॉलेज में, तो उसमें कुछ लोगों को बुलाते थे भाई, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाइए। तो हम तो थिएटर से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था, तो मैं चला गया साथ में। तो मैंने कोई एक लड़का कोई कर रहा था किसी का रोल, वो कर नहीं पा रहा था, तो जो हमारे डायरेक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे,
1: एनएसजी से।
2: तो उन्होंने देखकर कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पीछे से जैसे जो मैंने कहा भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों नहीं करते हो, कितनी बार कह चुके हैं सर
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला आप आके क्यों नहीं कर देते। तो मैंने पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैंने उसको बताने के लिए वो किया और शॉर्टकट ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया
1: जी।
2: उन्होंने कहा कि आप करेंगे ये रोल
1: जी जी।
2: ऐसे ड्रामे का इंटरेस्ट हुआ। फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल में मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करवाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। और उन दिनों तो हमारे बादल सरकार के विजय तेंदुलकर के जो नाटक थे वही हम करवाते थे। और एक मैंने प्ले करवाया था, मुझे याद है बासी खबर। जी, तो काफी उसको अप्रिशिएशन मिला, अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से ड्रामे में रहे और फिर हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एनएसजी के नाटक देखते भी थे। और इस तरह से नेशनल स्कूल ड्रामा के जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे दोस्त बन गए, तो उनसे भी सीखने को मिला। तो इस तरह से नाटक से हम जुड़े रहे स्टेज के, और स्टेज के नाटक के बाद हमें लगा कुछ कि फिल्म लाइन की तरफ भी देखा जाए क्या है
1: जी।
2: और इस तरह से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद दोस्तों के साथ इधर उधर बात करते रहते थे क्योंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था फिल्म में।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था कि हम कुछ क्यों ना करें। तो उसकी वजह से फिर मैंने मुंबई के चक्कर भी लगाए, यहाँ मिला, इधर मिला, उधर मिला। फिर ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि हमें एक फाइनेंसर मिला और फाइनेंसर ने कहा कि आप बनाइए। तो मैंने शुरू कर दी फिल्म, और गाने जब मेरी फिल्म के मैंने रिकॉर्ड किए यहीं पहले।

0: बॉम्बे लैब होती थी दादर में, वहां मैंने रिकॉर्ड किए गाने, तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तो वहीं से थे, कृष्ण कैलाश, लेकिन अरेंजर जो है उत्तम सिंह थे।
1: अच्छा, संगीतकार उत्तम सिंह।
0: संगीतकार उत्तम सिंह, जिन्होंने
1: महान संगीतकार,
0: जी जी,
1: कितना काम किया,
0: कितना काम किया।
1: पिछले दिनों ही वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे अपना इंटरव्यू,
0: बहुत
1: तब उनकी बातें सुनकर तो हम हैरान रह गए।
0: नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे और इतने बढ़िया नेचर के हैं वो। तो वो हमारे अरेंजर थे
1: जी।
0: तो हमने फिर अपनी तरफ से तो यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा जो है काम करें। और उसमें क्या किया कि हमें एक अंदर से इच्छा जागी मेरी कि आशा भोसले जी, यानी आशा दीदी और आशा ताई भी उनको बहुत प्यार से लोग कहते थे, और आज भी हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी फिल्म में हाँ की।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उन्होंने मेरी फिल्म में एक गाना गाया
1: जी,
0: और ये आज तक मेरी फिल्म में पहला और आखिरी गाना था उनका
1: जी, जी।
0: जो उन्होंने गाया।
1: तो ये कौन सी फिल्म थी इसका?
0: ये फिल्म का नाम था छन्नो,
1: हरियाणवी
0: फिल्म थी छन्नो।
1: हाँ, हाँ।
0: और इसमें जो सिंगर थे आशा भोसले जी थी, सुरेश वाडेकर जी, अनुराधा पौडवाल और दिलराज को।
1: अरे वाह।
0: और इस फिल्म की जो मेन लीड हीरोइन थी वो साधना सिंह थी।
1: अच्छा,
0: जिन्होंने नदिया के पार
1: जी,
0: में
1: जी, वो भी अभी कुछ ही दिन पहले आगे गई विविध भारती के स्टूडियो में
0: जी,
1: साधना जी, और उनसे हमने हमारे ही किसी साथी ने लंबी बातचीत की है
0: जी जी। तो बड़ा मतलब एक अच्छा रहा वो भी एक जर्नी जो है। और फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट था, और फिल्म जब रिलीज हुई तो मुझे अपना बचपन याद आता था, जब हम वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में विंडो में हाथ डालकर टिकट लेते थे और कई बार हाथ छिल जाते थे।
1: जी जी जी।
0: तो वो सब चीजें जब मैंने अपनी फिल्म के लिए देखी, लोगों का जो जुनून था।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। और मैं आपको रोहतक लिबर्टी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, वहां पर सीट थी मेरे ख्याल में 900 या 1000 के करीब थी, लेकिन वो लोग जो है थिएटर वाले कुछ अपना हिसाब किताब क्या जुगाड़ करते थे, तो वो 300-400 एक्स्ट्रा सीटें लगा देते थे।
1: हाँ।
0: और वो जो जब आप अपनी फिल्म की वो लोगों की सीटियां और तालियां सुनते हैं, सारा आपका जो आपने मेहनत की है
1: वो सफल हो जाती
0: है।
1: तो आपने भी क्या अपनी फिल्मों में कोई फूहड़पन या ऐसा कोई मसाला डालने की कोशिश की?
0: नहीं, मैंने अपनी फिल्म में, और मेरा कोई सेंसर कट नहीं था फिल्म के अंदर, क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट हमें पहले मुंबई से मिलता था, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे, और मैंने ऐसी कोई नहीं कही है, क्योंकि उस तरह का मेरा अपना नेचर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस देश में साफ सुथरी चीज बहुत लोग देखना चाहते हैं, और अगर चंद लोग फूड चीज देखना चाहते हैं तो मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता
1: जी। तो सुभाष जी, अभी एक शॉर्ट फिल्म का टीजर आया है आपकी एक फिल्म का, उसका क्या विषय है और क्या नाम है, इसके बारे में हमारे श्रोता जानना भी चाहेंगे।
0: श्रोताओं, मैं एक फिल्म बहुत पहले मैंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म सावधान।
1: सावधान
0: जी। और उस फिल्म को पहले, बहुत लंबी स्टोरी है कि ये हम उसको सीरियल बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा वो सीरियल अप्रूव हो गया था, और जो भी है उसके बाद फिर अभी कुछ वर्षों के बाद लगा कि नहीं उसको शॉर्ट फिल्म बना के उसको रिलीज किया जाए। तो सावधान फिल्म जो है मेरी बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे है, वाइल्ड एनिमल्स मिंगल विद ह्यूमन लाइव्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो आदमियों के साथ किस तरह का उनका रिलेशंस है, किस तरह का उनको रिलेशंस रहा था, और आज भी हम जंगल में जंगली जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और एक चीज नई शुरू हो रही है, आप देख रहे होंगे कि लोग बाग जीप में बैठ के जाते हैं और बड़े खुश होकर फोटो डालते हैं, देखिए टाइगर हमारे आगे से जा रहा है। तो आपके घर के बाहर
1: बिल्कुल
0: अगर शहरों में टाइगर घूमे तो आपको कैसा लगे, ये मेरी सोच।
1: बहुत बड़ी बात, तो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उनके क्षेत्र में जीपे लेकर घूमते हैं बेधड़क, तो ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता होगा जैसे हमें लगेगा कि हमारे घर के आगे से टाइगर या चीता निकल गया है
0: जी। और एक चीज मैं इस सावधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये सावधान में जो म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने दिया था।
1: अच्छा
0: जी।
1: दादा ने
0: और इसके जो सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब थे, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था

0: वो प्रीतम दा ने दिया था।
1: वाह, क्या?
0: और प्रीतम दा ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। और उस वक्त भी मैं कहता था कि प्रीतम दा एक दिन बहुत महान संगीतकार बनेंगे और वो बने
1: जी।
0: उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं चेक उनको देने लगा छोटा सा, तो उन्होंने, मैंने कहा कि प्रीतम दा इसका नाम क्या लिखूं आपका, स्पेलिंग क्या नाम की, तो उन्होंने कहा था सुभाष जी आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, ये मेरी जिंदगी का पहला चेक।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और मैं आज प्रीतम दा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और आज तो वो हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं। तो इस तरह से ये रहा और जल्दी इसको रिलीज करेंगे
1: जी।
0: और मेरे दर्शकों को और श्रोताओं को
1: ये देखने को मिलेगी, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म दर्शक देखे और उसको प्रोत्साहित करे। एक फिल्मकार होने के नाते आगे आपकी क्या योजना है, आप कम से कम शब्दों में हमें बताएं।
0: जी मैं एक फीचर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं एक अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में हूँ
1: जी।
0: और मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ और सब चीजें हो रही हैं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि रीजन क्या है कि आज के टाइम में बहुत फिल्में बन रही हैं और उसमें से बहुत सी अच्छी फिल्में ही बन रही हैं, लेकिन जो विषय मेरे दिल को भा गया मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा और लोगों के सामने आएंगी। अब लोग तो खुद ही देख के बताएंगे कि कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन मैं फीचर फिल्म बनाने की एक इच्छा है।
1: बहुत सुंदर, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और हमें देखने को मिले।
0: थैंक यू।
1: तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए दिया है। विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विविध भारती और अपने विविध भारती के श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम।
1: शुक्रिया।

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग रीमा जोशी का। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उस हमारे लेज लतीफ पति देव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
1: कौन कौन है? अरे भाई भैया आप।
2: नमस्ते भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसे गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो बट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
2: ट्यूशन पढ़ने? तो नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
2: मिक्सी? इमाम दस्ता वो?
1: पर भट भैया बात क्या है, कुछ बताओ तो भट भैया।
2: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
2: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
3: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए। मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
4: भी सर। तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसक विलंबित।
3: सर वो
4: देखा मिस्टर भट्ट,
2: विलंबित जो ठहरे सुपरिटेंडेंट साहब।
4: तो श्रीमान विलंबित जी,
3: जी
4: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
3: जी सुपरिटेंडेंट साहब वो बात ये है,
4: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
3: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब।
4: अरे मगर क्यों? अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
3: जी वो मैं समझा नहीं सर।
4: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं।
3: कैसा सिलसिला?
4: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी, कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
3: जी हाँ जी हाँ।
4: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
3: जी हाँ।
4: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
3: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
4: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया, अपने ससुर जी की पहली बरसी।
3: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
2: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं।
3: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा?
4: ओ आई सी।
3: जी सुपरिटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
2: जी हाँ सुपरिटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
3: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
4: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर, एक तो आप लेट आए।
3: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सर आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
2: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर, जब आप सीट पर नहीं होते।
3: तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है?
4: टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर, ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते
3: सर,
4: घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है?
3: नहीं।
4: चलिए चीफ के पास।
3: नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
4: क्यों आज क्या हुआ बोलो?
3: वो सर मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।

0: भट?
1: अरे ये कैसे हो गए सिकंदर
2: भाई? सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
0: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
2: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर कि अर्जेंट पेपर डील करने हैं।
0: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
1: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
2: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
0: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का?
2: क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुँच कर ही देखूंगा।
1: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिटेंडेंट साहब?
0: हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है।
1: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए, हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
0: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
2: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
3: हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंचे, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
1: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, और हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
3: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।
1: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
3: पक्के से पक्के कहो भट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
1: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
3: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट भैया।
1: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
3: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
1: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।

0: हाय राम, अभी तक गुसल खाने के फवारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो?
1: अरे क्या है, नहा रहा हूँ।
0: घंटे भर इस फुवारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
1: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
0: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे हो।
1: बिल्कुल,
0: मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
1: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जताने लगता है और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
0: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लती।
1: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
0: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
1: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
2: ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ।
1: मर गए। अरे सुपरिंटेंडेंट साहब, तो वो बैठे भीतर कमरे में।
2: यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ।

0: मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आया सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
1: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बता देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेटाने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊँ।

0: सर
1: आज तुमने मेरी सारी इज्जत पट्टी में मिलवा
0: दी सर,
1: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया
0: सर,
1: मैं तुम्हें डिसमिस कराकर छोड़ूंगा। यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
2: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिटेंडेंट साहब।
1: क्या सुनिए भाई?
2: मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकता
1: है। इमरजेंसी क्या हुआ? कौन मर गया? कौन अस्पताल चला गया? बोलो
2: सर। मेरी पत्नी सर।
1: क्या?
2: मेरी बीवी।
3: ये क्या कह रहे हो सिकंदर भाई? कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
2: एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां सर, मैं घर आ गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
3: तब तक क्या क्या क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
2: सर।
3: हाँ बोलो।
2: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो
3: हाँ बोल भाई बोल।
2: वो पाँव भारी है।
3: पाँव भारी है यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली?
0: आपको कोई तकलीफ है?
1: आई से शट अप
2: जी।
1: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
0: सुपरिटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
1: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है। आई से इट इज
3: इम्पॉसिबल। सर मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं?
2: यस
3: सर, सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आई जाएगी सर।
1: सच्चाई?
2: यस सर।
1: अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
2: यस सर।
1: तो ये देखो ये रही सच्चाई।
3: ये कैसा कागज है सर?
1: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
2: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
1: ऑर्डर नहीं अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
3: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
2: यस
3: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
1: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
3: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
1: ये भी जानना चाहते? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज? बोलो।
2: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
1: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
2: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
1: आई विल सी दैट यू आर
2: डिसमिस्ड। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा, मेरा गली में बंदा था।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हम अपने मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, गीत गुंजन।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित कार्यक्रम गीत गुंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी अजीत प्रताप सिंह। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा आराम करने का वक्त है, तो आइए अगले आधे घंटे तक संगीत के एक सफर पर प्यारी सी यात्रा करते हैं, जहां मिलेंगे आपको भाव, अपनापन और सुरों की मिठास।

आज की संगीतमय पेशकश में हम सुनेंगे नए दौर के कुछ लोकप्रिय गीत जिन्होंने अपनी धुन बोल और एहसास से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

आपने सुना केसरिया। प्रेम की नाजुक भावनाओं को खूबसूरत शब्दों और मधुर संगीत में पिरोता यह गीत आज के सबसे पसंदीदा गीतों में एक है। अब चलते हैं अगले गीत की ओर। यह गीत अपने सादे बोल और दिल को छू लेने वाले एहसास की वजह से श्रोताओं के बीच खूब पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी और इस गीत को अपनी आवाज दी नीति मोहन ने।

0: 嗨。
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों, संगीत की खास बात तो यही है कि यह बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात बता देता है। अब पेश है एक ऐसा गीत जो अपनेपन, भरोसे और प्रेम के एहसास को बहुत ही सहज तरीके से सामने लेकर आ रहा है। सुनते हैं फिल्म भेड़िया का गीत, आवाज एक बार फिर से अरिजीत सिंह की।

0: कार्यक्रम गीत गुंजन में शुरू की महफिल यूं ही चलती रहेगी इस अंतराल के बाद।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
4: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
5: जग घूमे थर जैसा न कोई।
3: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
4: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: हेलो
7: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
8: माय नंबर इज
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: श्रोताओं, शुरू की इस महफिल यानी गीत गुंजन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रात की इस मधुर बेला में उम्मीद है आज का यह संगीत में साथ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसकी धुन और भावनाओं ने हर उम्र के श्रोताओं का दिल जीत लिया है। सुनते हैं फिल्म डंकी का ये प्यारा सा गीत, आवाज एक बार फिर से अरिजीत सिंह की।

कार्यक्रम अब अपने ही आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन संगीत का यह सफर अब भी जारी है। अब प्रस्तुत है एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम, दूरी और इंतजार की भावनाएं बहुत खूबसूरती से झलकती हैं। सुनते हैं फिल्म शेर शाह का ये गीत। आवाजें हैं तनिष्क बागची, जुबिन नौटियाल और आशीष खौर की।

और अब बारी है आज के इस संगीत में प्रस्तुति की अंतिम गीत की। श्रोताओं, कई बार कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। एक ऐसा ही भावपूर्ण गीत अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म कबीर सिंह से। आवाज है मिथुन और अरिजीत सिंह की।

आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का ये भावपूर्ण गीत, तुझे कितना चाहने लगे हम। प्रेम के समर्पण, संवेदना और गहरे एहसास को स्वर देता यह गीत आज की पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय गीतों में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। इन्हीं मधुर स्वरों के साथ आज के गीत गुंजन को यहीं विराम देने का समय आ गया है। आशा है आज की यह संगीतमय प्रस्तुति आपकी शाम को सुकून, ताजगी और मधुर स्मृतियों से भर गई होगी। आपके स्नेह और विश्वास हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहता है, तो अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। फिलहाल मुझे यानी अजीत प्रताप सिंह को दीजिए अब अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। श्रोताओं, ध्यान रखें, आज रात 10:30 से हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके ठीक बाद न्यूज एट 9, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापक

0: ता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाई जी, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में

0: के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,000

0: 510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM बैंड 101.9 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। सुनते हैं कार्यक्रम महफिले गजल।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: BEd, DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
4: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
4: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
5: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
4: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: कार्यक्रम महफिल गजल में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली गजल गुलाम अली की आवाज है।

0: श्रोताओं, इसी गजल के साथ ही गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल अब समाप्त होता है।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: अभी आप सुन रहे थे महफिल गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। और अब आइए सुनते हैं सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
0: श्रोताओं, प्रणाम, आदाब और स्नेहिल नमस्कार। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित आपके अपने पसंदीदा लाइव फोन इन फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो अयोध्या में मैं हूं आपका अपना साथी अजीत प्रताप सिंह। और अगले पूरे एक घंटे तक हम रहेंगे साथ बातों के, यादों के और मधुर फिल्मी गीतों के इस खूबसूरत से सफर में। अगर आप भी अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो किसी अपने को या फिर अपने किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं या सिर्फ हमसे और हमारे श्रोताओं से बात करना चाहते हैं तो अभी मिलाइए हमारा नंबर 7376 4090। नंबर एक बार फिर से सुन ले 7376804090। आपका फोन सीधे स्टूडियो में आएगा और आप लाइव जुड़ेंगे आकाशवाणी अयोध्या से। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बन जाइए हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा।

0: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पहले कॉलर के साथ। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आवाज आ रही है आपको?
1: आ रही है सर।
0: जी नाम बताएं अपना और कहां से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, मेरा नाम बबलू है सर, मैं अयोध्या फैजाबाद शहरों से बोल रहा हूं।
0: बबलू जी, आपकी कॉल आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम हेलो अयोध्या में लग चुकी है। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: सर नदिया पार का गाना सुनना है, अंगना में आई अमार बाग हो जी।
0: ठीक है बबलू जी, हम आपकी फरमाइश पर ये गीत आप तक पहुंचाएंगे। करते क्या है, कुछ अपने बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। हेलो।
1: हाँ सर
0: जी। बबलू जी करते क्या हैं?
1: सर मैं टेलर का काम करता हूँ सर।
0: टेलर का काम करते हैं और रेडियो तो आपके प्रोफेशन में मैंने देखा है कि अक्सर लोग सुनते हैं लगा करके अपना काम।
1: सर गाना भी सुनता रहता हूँ आपका।
0: अच्छा,
1: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर।
0: जी आवाज अब सही आई? हेलो
1: आ रही है सर। हाँ सर
0: जी, चलिए ठीक है, हम आपकी फरमाइश पर फिल्म नदिया के पार का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। जसपाल सिंह की आवाज में ये गीत है। कॉल करने के लिए बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हेलो अयोध्या में। उम्मीद है पहला गीत आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यह कार्यक्रम आपके प्यार और आपकी फरमाइशों से सस्ता है, इसलिए आपका एक फोन किसी की मुस्कान बन सकता है, किसी की यादों को ताजा कर सकता है। हमारा नंबर है 7376 80 40 90। कॉल कीजिए और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगले कॉलर को। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
1: हम त्रिदेव बोलिबा हरिपुर जलालाबाद से।
0: हरिपुर जलालाबाद से त्रिदेव जी की कॉल है। त्रिदेव जी ये बताएं गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: सर हमें आज हम पिक्चर का गाना सुनावे।
0: हम पिक्चर का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कागज कलम दवातला।
0: ठीक है, हम आपकी फरमाइश पर फिल्म त्रिदेव का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।

0: आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या। धीरे धीरे रात अपने पूरे शबाब पर है और संगीत का यह कारवां भी अपनी खूबसूरत सी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक हमें फोन नहीं किया है तो अभी भी समय है। हमारा नंबर है 7376 4090। हेलो हेलो, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकिन हो सकता है उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, श्रोता आप हमें मिलाते रहिए। नंबर 7376 4090 ये हमारा नंबर है और एक कॉल आ चुकी है हमारे पास, देखते हैं कौन से श्रोता है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
1: राजकुमार चौहान, रानी बाजार अयोध्या से बोल रहे
0: हैं। राजकुमार चौहान, रानी बाजार अयोध्या से। गाना बता, बारून बाजार। राजकुमार जी, गाना कौन सा सुनिएगा
1: जी? सुना दीजिए, तेरी मेहरबानियां का आगल की तनमनी में क्या पानी भरता है।
0: राजकुमार जी, करते क्या हैं आप
1: जी? हम ये लाइट का काम करते हैं, प्रचार भी करते हैं, हर चीज का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, विद्युत विभाग का, बैंक का।
0: अच्छा, और रेडियो कब सुनते हैं?
1: रेडियो एनी टाइम, सुबह 5:57 से लेकर रात 11 तक तक।
0: अच्छा अच्छा, ये गाने के बोल क्या बताए थे आपने राजकुमार जी?
1: जी सर,
0: गाने के बोल आपने क्या बताए थे तेरी मेहरबानियां फिल्म का?
1: आग लगी तन मन में क्या पानी बरसा है।
0: अच्छा ठीक है,
1: कैसे जिया जाए गलती सावन के दिन आए।
0: जी बिल्कुल, ये गीत आप तक पहुंच रहा है, गीत को एंजॉय करिए।
1: जी सर,
0: गीत को एंजॉय करिए, गाना आप तक पहुंच रहा है।
1: जी तेरी मेहरबानियां सर।
0: जी जी बिल्कुल, बज रहा है ये गाना, गाने को एंजॉय करिए।
1: ओके सर, थैंक यू सर।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: हेलो विद्या, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, संगीत दिलों को जोड़ता है, दूरियों को मिटाता है और यादों को हमेशा जिंदा रखता है। तो देर किस बात की है, बस डायल कीजिए 7376 4090। हेलो
3: सर जी, नमस्कार, मेरा नाम रमेश बहादुर सिंह है, यूपी राय बरेली, अब अमेठी हो गया है। मैं इस समय जो है टिकरी बॉर्डर हरियाणा में काम कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम एप पर सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी आवाज चलती है और आप लोग की आवाज सुनकर गांव की पूरी याद आ गई। अब थोड़ा दो शब्द आप बोल रहे, क्योंकि आप अगर बोलते हो तो हम भी सुनते रेडियो पे, ये तो अच्छी बात।
2: रमेश बहादुर सिंह जी, आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके जैसे जो सुधी श्रोता होते हैं उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। रमेश जी, अपनी फरमाइश होता है
3: आपका ये रेडियो का, शायद हमें गलत ना हो तो 32वां 36वां स्थापना दिवस भी हुआ है कहीं ना कहीं, अगर हम सही हो तो।
2: जी जी जी
3: हाँ, और आपको प्रोग्राम, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से टीम पूरी बना रहे, जिसका जरूरत पड़ता है वो भी, चाहे अमरजीत सर जी हो, चाहे ये हमारे त्रिवेदी सर जी हो, बहुत से लोग मतलब इतना मेहनत करने के बाद में आपको भले ये बात को नहीं पता हो लेकिन हम सब सुनते हैं तो इसकी चर्चा होती, कितना बढ़िया लोकायतन हो, किसान वाड़ी हो, इसकी जितनी तारीफ की एक कम है। अब सर आप बोलो, क्योंकि दुनिया आपको ज्यादा सुनती और हम भी तो सुनते हैं।
2: जी, आपने कॉल किया है तो

0: हमारी भी चाहत है कि दुनिया आपको भी आकाशवाणी अयोध्या के माध्यम से सुन रही होगी।
1: मैं तो सबसे बड़ी चीज सर जी एक बात बोलूं
0: जी बताएं,
1: क्योंकि अब समय का भाव है, मैं ये कहना चाहता हूँ जितना हमें फोन मिलाने में नहीं अच्छा लगता, वैसे तो अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितना आप लोगों से बात करते हो, हर लोग से बात करते हो, जैसे कोई बिहार से हुआ, कोई रायबरेली से, दिल्ली से, हरियाणा से,
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: हमें और खुशी एक दूसरे की बात सुनने में अच्छा लगता है
0: सर जी।
1: क्या सीख मिलती है, क्या बात मिलती है, कैसे बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज आप लोग इतना बॉडी लैंग्वेज में बोलते हो कि मतलब इतना सब छोड़ के आपकी बात सुनता। अब तो खैर जो गांव में रहते हैं उसकी सुनाई अच्छी रहती है रेडियो की, दो शब्द आप बीच में बोलो ताकि मैं देख सुनूं।
0: रमेश जी, अब आपसे दरखास्त है कि अपनी फरमाइश हमें बता दें कि गाना कौन सा सुनिएगा।
1: हमारी गाने का नाम है चिट्ठी आई है, नाम फिल्म से है। अगर आप चाहो तो दो चार डायलॉग या कमेंटेटरी, आज इंग्लैंड भारत का जो मैच
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं हो पाया है
0: आज,
1: अगर आप चाहो तो
0: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का।
1: सर
0: हेलो, आज जो है जो वुमेन्स T20 चल रहा है उसका जो सेमीफाइनल मैच जो है 10:30 बजे से जो है प्रसारित किया जाएगा। आज का मैच जो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में है, सुनिएगा जरूर।
1: अच्छा सर जी, एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ, जैसे वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे हैं और ये सब चर्चा का विषय बना है, तो जो शब्द अगर बोल दोगे तो वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि हम IPL देखता रहता हूँ वनडे ग्राउंड पर, फिरोज शाह कोटला यानी कि दिल्ली में देखता रहता हूँ सर जी।
0: अच्छा, आप क्रिकेट के बहुत सुधीर श्रोता हैं।
1: बिल्कुल हाँ, आप और सर मैं जितना IPL मैच होता सबको जाता रहता हूँ, ये एक धोनी से तो नहीं मिलता लेकिन दूर से उनसे वो हो जाता है।
0: रमेश जी
1: जाता रहता हूँ
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा कल लगा। फिलहाल समय को ध्यान में रखते हुए,
1: क्योंकि अमरजीत सर को भी डिडेट करना, आपको भी गाना डिडेट करना है, हम गांव का नाम पूरे सुपरस्टार सिंह का पुरवा है, तहसील तिलोई भी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, यही तिलोई के पास है।
0: चलिए आपकी फरमाइश पर
1: सर जी, एक सेकेंड सर जी, हम जानते हैं आपका टाइम लिया, लेकिन हम ये जो आपने बोला है कि हमारा कम से कम 6-7 महीने बाद फोन आपसे बात हुई, पहला नंबर तो बाकी 2 महीने और ऐसे ही अगर आप बीच में बोल देते 1 हफ्ता बाद को 3 हफ्ता बाद को, ताकि और जुड़े लोग और सीखे।
0: बिल्कुल
1: लोग।
0: बिल्कुल, ये हमारे सभी श्रोताओं से दरखास्त है कि जिनकी कॉल आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जा रही है।
1: आप मेरी बात सुनो, देखो आपके बोले बात अलग रहती है क्योंकि हम खुद उसी में हो जाते हैं, हम नहीं
0: चाहते। आपकी बात भी हमारे श्रोताओं तक पहुंच गई। फिलहाल कॉल करने के लिए धन्यवाद रमेश जी, गाने का आनंद लीजिए।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
5: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या। श्रोताओं, समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है लेकिन संगीत का आनंद अभी भी जारी है। 7384 4090 हमारा नंबर है, डायल कीजिए और जुड़ जाइए कार्यक्रम से। देखते हैं कौन से श्रोता फिलहाल हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो।
6: हाँ हेलो
5: जी, कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: हाँ, मेरा नाम उषा दुबे है सर। नमस्कार
5: जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं उषा जी?
6: हाँ जी, दर्शन नगर से बोल रही हूँ, जिला अयोध्या से।
5: उषा जी, ये बताएं कि आज आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
6: जी, घर द्वार का गाना सुनना है।
5: घर द्वार फिल्म का कौन सा गीत?
6: टाइटल सॉन्ग
5: कोई जाए काशी कोई जाए मथुरा।
6: जी जी सर।
5: उषा जी, करती क्या है, कुछ बताना चाहेंगे हमें अपने बारे में?
6: जी, मैं टीचर हूँ।
5: टीचिंग करती हैं आप? और टीचिंग के प्रोफेशन मतलब पढ़ाने के बाद आप रेडियो?
6: हाँ,
5: भी सुनती
6: हैं
5: आकाशवाणी?
6: और घर पे भी दो बेटियां हैं।
5: अच्छा अच्छा, आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को कब सुनती हैं आप? हेलो, चलिए ठीक है, हम आपकी फरमाइश पर फिल्म घर द्वार का। जी नमस्कार, ये गीत आप तक पहुँचा रहे हैं, इंजॉय करिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब देखते हैं कौन से श्रोता हमारे साथ फिलहाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। जी नमस्कार,
1: मेरा नाम मोनी है सर, मैं जिला बस्ती से और सिकंदरपुर से बोल रही।
0: जिला बस्ती से मोनी जी का कॉल है। मोनी जी फरमाइश बताएं, गाना कौन सा सुनिएगा, फिल्म का नाम और
1: गाना।
0: प्रेम
1: रोगी का सर सुनना है।
0: प्रेम रोगी,
1: मेरी नानी जी।
0: कौन सुनेगा?
1: मेरी नानी जी।
0: आपकी नानी जी सुनना चाह रहे हैं फिल्म प्रेम
1: रोगी का। बहुत पहले से वो सुनती है, वो 80 साल की हो गई है जब से सुनती है रेडियो।
0: अच्छा, रेडियो वो लगातार सुनती हैं और
1: हाँ, लगातार
0: रेडियो 80 साल की
1: सोती हैं तभी बंद करती हूँ।
0: तो मतलब ये जो ये फरमाइश आई है वो बेसिकली आपकी नानी की ओर से है। हेलो।
1: हाँ सर,
0: ये फरमाइश भी आपने नानी जी की ही ओर से जो है हमको बताई।
1: मेरी नानी जी का
0: है। चलिए ठीक है, आपको और
1: लीजिए सर, मेरी नानी जी से बात कर लीजिए।
0: जी बिल्कुल, बात कराइए। वो नहीं बोलना चाह रही है। कोई बात नहीं, हम उनकी फरमाइश पर ये गीत उन तक पहुंचा रहे हैं।
1: सही बात करेंगी सर।
0: चलिए कोई बात नहीं है, आप फिलहाल उन तक ये गीत पहुंचा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी सर। थैंक यू सर।

0: की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि

0: यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे वे श्रोता जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार

0: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा सर, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: टेक चंद्र अग्रवाल जी परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: टेक चंद्र अग्रवाल जी ये बताएं गाना कौन सा सुनेंगे आज आप? हेलो
0: हेलो
1: जी, आवाज आ रही है आपको? गाना कौन सा सुनिएगा?
0: हाँ सर, आवाज बहुत धीरे में आ रही है सर।
1: गाना कौन सा सुनिएगा टेकचंद जी?
0: सर मुझे गाना सुनवा दीजिए सर, फिल्म है शोर।
1: शोर फिल्म
0: और का... मुकेश लता जी की आवाज है।
1: मुकेश और लता जी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
1: ठीक है टेकचंद जी, ये बताएं कि आप करते क्या है, कुछ बताना चाहेंगे हमें अपने बारे में?
0: हाँ सर
1: जी।
0: जी सर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ सर, और 6 से 7 साल हो गए सर मुझे कोल इंडिया से रिटायरमेंट हुए।
1: कोल इंडिया में आप काम करते थे और फिलहाल आप रिटायर्ड हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं?
0: सर मैं पहले अयोध्या आकाशवाणी का जो है नियमित होता था।
1: अच्छा अच्छा।
0: और 8-10 महीने का सर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था कुछ पारिवारिक से समस्या के कारण।
1: जी जी। और अब
0: तो अब सर क्या है, जो स्वास्थ्य वगैरह घर पर जो हमारी श्रीमती जी का रहता था वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है, तो सर अयोध्या से हम फिर जुड़ते रहेंगे और भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे।
1: चलिए, आप जैसे सुधी श्रोताओं के साथ बात करके हमें बहुत खुशी हुई। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं फिल्म शोर का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, जिसे आपने पसंद किया है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अभी भी हमारे पास लगभग 20 मिनट का, क्षमा कीजिएगा, 10 मिनट का समय शेष है। और जो श्रोता अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, 7386-4090 हमारा फोन नंबर है, लगाकर हमसे जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी फरमाइशी फिल्मी गानों को, और कुछ बातें भी अगर वे चाहें तो हमसे कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कौन से श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे अन्य श्रोताओं को अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
1: क्या था, आपने आवाज नहीं आ रही।
0: जी, मैं बोल रहा हूं कि अपना नाम बताएं और कहां से बोल रही हैं।
1: मेरा नाम रीता है, मैं बारून बाजार जिला अयोध्या से बोल रही हूं।
0: बारून बाजार जिला अयोध्या से रीता जी का कॉल कार्यक्रम हेलो अयोध्या में फिलहाल लग चुका है। ये बताएं रीता जी, फिल्म और गाने के बोल क्या हैं जिसे आज आप सुनना चाहेंगे?
1: अंदाज फिल्म।
0: अंदाज फिल्म का कौन सा गाना?
1: अल्लाह करे दिल ना लगे।
0: अल्लाह करे दिल ना लगे, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना है। कॉल करने के लिए रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। गीत का आनंद लीजिए।

0: और अब आपका अपना हेलो विद्या कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव की ओर। आज का ये प्रोग्राम 5 मिनट शेष और अब शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम श्रोता को। हेलो
1: जी सर, नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
1: ऋषि पाल सिंह बारून बाजार देवरिया
0: गांव का नाम है शायद, और अयोध्या से आपने कॉल किया है। ऋषि पाल सिंह जी, जल्दी से बताएं कि आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: छुपा रुस्तम पिक्चर का है सर, बंगला गाड़ी झुमके कंगना।
0: छुपा रुस्तम फिल्म का बंगला गाड़ी झुमके कंगना, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है। गीत को एंजॉय कीजिए। ऋषि पाल सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का हेलो अयोध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
3: First ball 20.
4: Unbeaten in the group stage and looking absolutely ruthless, ICC Women's T20 World Cup hosts England are set to be up against back-to-back finalists South Africa at the Oval. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Dharmendra Mani Rajesh.
5: जी मेगा, और अब हम अपने मेहमानों का भी परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं ख्याति गुलानी पूर्व क्रिकेटर, जिशानुल यकीन पूर्व क्रिकेटर, और जी राजा रमन वरिष्ठ खेल पत्रकार। तो सवालों की शुरुआत राजा आपसे ही
6: जी।
5: टॉस की आज के मैच में कितनी बड़ी और क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात को देखते हुए कि इस विश्व कप में द ओवल मैदान पर जो इससे पहले दो मैच हुए हैं दोनों चेस करने वाली टीमें जीते हैं।
6: मेरा अपना मानना है धर्मेंद्र के टॉस का कोई ज़्यादा मायना नहीं रहेगा, सेमीफाइनल है। बात आ जाएगी नर्व पे, कौन सी टीम बेहतर अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी और अच्छा क्रिकेट खेलेगी, उन पे वो डिसाइड करेगा। चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या गेंदबाजी करो, इट बी अ कीन कॉन्टेस्ट। दोनों अच्छी टीम है और इट बी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर। आप बाद में पूछेंगे जरूर कि आप बताओ कौन जीतेगा, लेकिन बताना बहुत मुश्किल काम होगा ये।
4: थैंक्स फॉर प्रॉम्प्टिंग अस राज, वी वुड मेक श्योर दैट वी पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ ख्याति, वी हैव सीन विद द साउथ अफ्रीकन टीम, दे डिडंट हैव इट इजी इन द ग्रुप स्टेज। इनफैक्ट अगेंस्ट बांग्लादेश टू दे स्टार्टेड बिफोर रजिस्टरिंग अ 4-wicket विन।
7: Yeah, I mean, they had few lapses there in their group, but I'm pretty sure that they are known for, you know, as a chokers also, and they can be as well. So let's...
4: Absolutely, we'd wait and watch. Or toss ke liye dono kaptan tayar hai, Wolfart or Brunt.
8: The referee's ready. Nat, if you could get the coin, please, and give it a spin, please, Nat.
9: Tails.
10: Cool.

0: I think that's the hallmark of a good team, Mega. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first ball. I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot. And I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. And I think England will have the edge in this game.
1: Khyati, home condition aur gharilu support bhi hoga England ke paksh mein, to ye unke liye positive ho sakta hai ya unke upar pressure aa sakta hai iski wajah se?
2: Abhi tak to jaisa dekhne ko mil raha hai is tournament mein unko support hi mil raha hai and they are very well aware of the conditions and jis tarike se wo khel rahe hain unko pata hai ki kis tarike se hame kab hame gear second gear lagana hai, kaise kab defensive hona hai. To I think they are getting good support from the crowd as well, and as well as they are well aware of about the conditions.
3: Zeeshan, khas karke top order ne kafi atishi ballebazi ki hai ab tak. Top 3 ka jo scoring rate raha hai 8.8 ka abhi tak tournament mein sarvadhik.
4: हाँ बिल्कुल, देखें उनके पास में जो जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज़ में, तो एक वो ज़रूर से नज़र आना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं. बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है. जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है. उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है. मोरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ासकर जो वुमेंस क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की. वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें. शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर. अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद होएगा.
1: और आज बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के 5 मैच जीतने में सफल रही है. दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी में किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते. मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
0: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के ज़्यादा बेहतर रहे. अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत लेंगे वो मैच. लड़खड़ा गई थी टीम, और वहाँ से उठ के आना जीतना अच्छी बात है, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विथ इंग्लैंड, और ख़ास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस. अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज़ सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है.
3: One of the players contributing to that edge is Dani Vyath-Hodge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
2: Yeah, I mean, she's a very good batter and she always give a very good start to the team, and she has given, she has proved in this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, I mean, they can find a very good score in this match.
1: Jishan, itihas ka kis-

0: मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में, इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
1: ज़रूर थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए आजकल जो क्रिकेट जो हो गया इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीज़ें जो है ना वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं आजकल। जो जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीज़ें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीज़ों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे ख़ासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीज़ें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा। और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ ये ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं। जहाँ तक इस मैच की बात है साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के सपोर्ट में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है, तो हमें वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है।
2: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर नंबर 011-2342-1084 and 85। लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर। नमस्कार जी, रवि क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए। वेल आवर लिसनर देयर सर्टेनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट, ही इज एम्फेटिकली डिक्लेयर्ड दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट कर्टसी आया बोंगा खाका। एंड वेल साउथ अफ्रीका डू हैव अ ग्रेट बोलिंग अटैक, particularly the pace attack, 25 wickets that their pacers have picked up is the highest thus far in the tournament, Raja.
3: But you have to look at the teams that they have played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team, you're up against the home team now. Whatever you've done in the past has brought you here. But you've got to perform at your best now, Megha. And that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball. And that is when all the effort that they've put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to play very good cricket to beat England.
0: And Megha, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि कमेंटेटर जो है वो अंपायरों के नाम बताएं कि आज के मैच में कौन कौन से अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आप बता दें।
2: जी बिल्कुल, एलोइस शेरिडन, जैकलीन विलियम्स हैं दो अंपायर और टीवी अंपायर हैं क्लेयर पोलोसैक और रिजर्व अंपायर हैं कैंडेस या बोडे।
0: और अब सवाल ख्याति से कि दोनों

0: टीमों की कप्तानों पर अगर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड के कप्तान नेट सीवरब्रंट फिट होने के बाद इस मैच में वापसी कर रही हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फॉर्ट फॉर्म के लिए संघर्ष कर रही हैं पूरे टूर्नामेंट में और सेमीफाइनल जैसा अहम मुकाबला है। दोनों की कैप्टेंसी के साथ साथ बल्ले की कितनी बड़ी भूमिका इस सेमीफाइनल मैच में रहने वाली है।
1: देखिए अगर आप इनका पुराना अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इन दोनों का मिडल नेम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे बहुत अहम माना जाएगा। एंड जिनका मिडल नेम ही कंसिस्टेंसी है तो आई एम श्योर दैट दे विल प्रूव देयर बैटल एंड मेटल। एंड डेफिनेटली वोल्वर्ट का एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो उसका भी हर बेस्ट इज येट टू कम एंड आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर देयर टीम। डेफिनेटली शी विल शो अ गुड गेम टुडे।
0: और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं हमारे श्रोता। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर,
0: नाम बताइए अपना।
2: सर मैं विश्वप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से।
0: जी अपना सवाल और जो भी टिप्पणी आपकी वो कृपया बताएं।
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का, मैं चाहता हूँ कि आज दक्षिण अफ्रीका जीते क्योंकि इनका लक हमेशा इनके खिलाफ जाता है, आज इनको ईश्वर जिताए। और मेरा ये प्रश्न है आपको कि आज क्या दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या?
0: जी प्लेइंग 11 की बात करें तो बदलाव तो है कुछ दोनों ही टीमों में और हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव है। मेगा बताएं कृपया।
3: बिकॉज द कैप्टन कम्स बैक, नैट सीवरब्रंट कम्स बैक फॉर इंग्लैंड, सो सोफिया डंकले हैज हैड टू मेक वे फॉर हर, सो दैट्स द चेंज इन द इंग्लैंड playing 11 and Sophia Dunkley had been featuring in the games where we didn't see skipper Nat Silverbrunt around. And talking about South Africa, they have gone for one change as well and Sunil Loos is come in for Dane Van Niekerk.
0: जी और राजा अगर इस मैच की हम बात करें फिर से एक बार फिर तो इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
4: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे, एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में, खास करके उनके बल्लेबाजी में। दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोक लें तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंड द स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको। क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाएं।
3: And Khyati, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
1: So definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment. And there are chances they can lift the trophy as well. And because if you have seen their past performances, they have done really well. And it's a good decision because now the team looks very balanced and packed. And the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well. And it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
0: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को कम्फर्टेबल स्थिति में पाए?
5: मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि जो आज है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉर है जो पेस बॉलर्स उनके हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम के और जो इंग्लैंड टीम के जो बैटर्स हैं उनके बीच में एक वॉर है। मैं ये फिर से ये कहता हूँ कि शुरू का 6 ओवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है T20 के मैचेस के लिए, दोनों के लिए।

0: पेस बॉलर्स के लिए जो दूसरी टीम के हैं और जो बैटिंग जो करने आएंगे उनके लिए, तो ये खासकर बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर वो जो उनके बैटर हैं उनके बारे में ये ज़रूर है कि उन्होंने 100 भी किया था लास्ट किसी मैच में हॉज ने, तो हॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो एक लंबा अगर वो खेलने की कोशिश करें, लाइक अगर वो ये सोच के चलें कि हम शुरू के 6 ओवर में 50-60 बना दें और आउट हो जाएं, फिर वो प्रॉब्लम होएगी, इंग्लैंड टीम को बनना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये होएगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं उन्होंने बनाया होगा कि शुरू के 6 ओवर में जो इनके पेस बॉलर्स हैं उसको कैसे फेस करना है, कम विकेट गिराना है, आप आगे लेकर टीम के चलेंगे। अगर ऐसा करने में वो सक्सेस होती हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लंबा स्कोर इंग्लैंड खड़ा करेंगे पेस बॉलर्स के अगेंस्ट में, और बाद में टीम जो उन इंग्लैंड टीम के पास में स्पिनर्स हैं कुछ, मैंने देखा है कि काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और इंग्लैंड को जिताने में उनकी बहुत मदद रही है। तो मेरे ख्याल से ये शुरू का जो 6 ओवर का मैच है इंग्लैंड के लिए खासकर और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए खासकर, ये डिसाइड करेगा। फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैटिंग करने आता है या जो बॉलिंग करता है, दोनों के लिए, कि वो कैसे कम से कम स्कोर में इन्हें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। जो इसमें कामयाब होंगे वो ऊपर की तरफ ज़रूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें शुरू के 6 ओवर में अगर 40-45 भी रन बनते हैं तो वो उतना बनाएं, विकेट ना गिरने दें, सो डेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर कोई दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आगे हिट करके और 150-60 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, टारगेट होएगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज़ में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूर है, क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमीफाइनल में अगर आप थोड़े से भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने आपको लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और ज़रूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होएगी।
1: और राजा, फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग में वो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
2: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, मोहल्ले का मैच हो या ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद भारत के टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वाज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 or 15 रन्स, देयर विल बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफ़ी फिट टीम है एंड आई थिंक इट गोइंग टू हेल्प देम, लेकिन मैच तो इंग्लैंड की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, पहले 6 ओवर में पता चल जाएगा, बट आई थिंक इंग्लैंड इज विल हैज द कैन कॉल द शॉट्स इन दिस गेम।
3: Albeit subtly, we've had predictions from our experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So, it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets for South Africa. A battle really to watch out for in this first innings as we wrap up our show here at First Ball 20 with the two England openers, Danny Wyatt-Hodge and Amy Jones, heading to the centre. First Ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का T20 महिला विश्व कप का सेमीफाइनल नंबर 2 यानी दूसरा सेमीफाइनल आमने सामने होने वाली टीमें इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, और मेजबान है इंग्लैंड और वेल्स में इस बार।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?